साथियों, अच्छाई और बुराई हम सभी जानते हैं। हमें मालूम है कौन सा रास्ता गलत है और कौन सा रास्ता सही है, लेकिन कई बार जानते बूझते हुए हम नकारात्मक रास्ते पर चल पड़ते हैं, वो रास्ता जो हमारे काम का नहीं है। समय का सदुपयोग होना चाहिए, करना चाहिए।

समय नष्ट हो रहा है। ऐसे में उस भागते समय को, दौड़ते समय को अगर उसका सदुपयोग कर लिया जाए तो ही उसकी सार्थकता है, वरना समय तो जा ही रहा है। समय का सदुपयोग हमें ना सिर्फ आगे बढ़ाता है बल्कि जीवन की सार्थकता की ओर भी ले जाता है। एक सार्थक जीवन ही सही मायने में संतोषी जीवन है, क्योंकि जीवन में अगर सार्थकता नहीं है, जीवन में कोई आयाम नहीं है, बिना उद्देश्य का, बिना आयाम का जीवन कोई जीवन नहीं।

समय का बहुत हद तक सदुपयोग कर सकता है। FM 102.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। सुबह के 6:15 हो चुके हैं। चलिए चलते हैं भक्ति संगीत की ओर और सुनते हैं वंदना।

0: बातों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है, कहानी ना समझो।
1: आई आई आई सुकू सुकू आई आई

अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार चोरू।

साथियों, याद के शब्द जो इस गाने में सुना तो याद आया कि कुछ हम गलत भी कर डालते हैं अपने जीवन में, खास तौर पर जब हम रोड पर चलते हैं। इन दिनों बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम रोड पर चल रहे होते हैं, पैदल चल रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है और हम तुरंत उस फ़ोन को उठाने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं और उठा भी लेते हैं और बात भी करने लग जाते हैं। सोचने लायक बात यह है कि क्या टेलीफोन कॉल इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन को संकट में डाला जाए। चाहे बाइक चला रहे हों या फोर व्हीलर चला रहे हों या रोड पे पैदल चल रहे हों, टेलीफोन कॉल अचानक से हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। और जब हम फ़ोन पर बात करते हैं चलते चलते, तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान उस बातचीत में रहता है। ऐसे में ना हम ढंग से चल पाते हैं और बाकी जो लोग चल रहे हैं, जो व्हीकल आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए भी हम खतरा बन जाते हैं। यानी कि हम चलते फिरते खुद भी खतरा, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी खतरे बन ही जाते हैं। तो ऐसे में एक बात तो तय है कि रोड पर टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन से बातचीत करना खतरे से खाली नहीं है, खुद के लिए भी नहीं और बाकी आसपास के लोगों के लिए भी नहीं। ये जो एक चलन चल रहा है फ़ोन पे बात करने का, रोड पे चलते चलते बात करने का, ये अपने आप में रिस्की है, क्योंकि उस समय हम नहीं जानते कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होने जा रही है तब भी हम नहीं संभल सकते। आपने देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं, लूटपाट हो जाती है, तो वो क्यों होती है? कहीं ना कहीं हमारा ध्यान उस समय उतना अवेयर नहीं होता और जब हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो ध्यान तो फिर कहीं और ही रहता है। ऐसे में जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो क्यों फिर दुर्घटनाओं को आमंत्रण देना? बात करनी है तो घर पे पहुंच के की जाए या कहीं तसल्ली से बैठ के की जाए। रोड चलने के लिए है, फोन पे बात करने के लिए नहीं।

इसलिए साथियों, इस बार जब आप रोड पे हों और आपका फोन बजे तो सोच लीजिएगा कि ये फोन कॉल आपके लिए समस्या भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा फोन कॉल कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा जरूरी हो। कई बार कंपनियों के फोन कॉल्स आते हैं, लेकिन ऐसे कॉल्स को हम देखने भर के लिए भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जेब से मोबाइल को निकालना और अगर कार के डैशबोर्ड पे या साइड में मोबाइल रखा है तो उसे देखने के लिए अपने ध्यान को उस मोबाइल की स्क्रीन पे लगाना हमें हमारे मूल उद्देश्य यानी रोड पर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचने से भटकाता है, और ये भटकाव कभी कभी जिंदगी से भी भटकाव हो सकता है। इसलिए बचें खुद भी और बचाएं औरों को भी।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में गाना सुन रहे हैं आप राजेश रोशन के म्यूजिक के साथ। फिल्म का नाम है बातों बातों में और बातों बातों में ही समय बीत जाता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू, आकाशवाणी केंद्र चूरू से।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: साथियों, होता ये है कि कई बार हम सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। खैर, हम जिस समाज में जीते हैं, हम जिस दुनिया में जीते हैं, बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान होता है, व्यवस्था होती है, तब जाकर के जीवन संभव होता है।

अब आप भी कहेंगे कि ऐसी बात भला क्या है कि जब दुनिया चल ही रही है, जीवन चल ही रहा है, तो ये बात हम ही क्यों सोचें। देखिए, व्यक्ति का अपना जीवन है, सबको सोचना तो है ही। हमारे दोस्त, हमारे श्रोता, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर भी इतने अवेयर हैं कि हमें अवेयर करते रहते हैं कार्यक्रमों के लिए। हमारे कई साथियों के भी ऐसे संदेश आते रहते हैं कि आज ऐसा प्रोग्राम कीजिए या इस तरीके से प्रोग्राम को, इसमें टॉपिक होने चाहिए। खैर, एक खास दिन है आज, और 1 जुलाई। जी हाँ, खास कुछ यूँ है कि इसमें आज के दिन के लिए कुछ खास दिन मनाए जाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं किसी भी दिन को मनाने के लिए। आज का दिन CA डे यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के तौर पर भी मनाया जाता है। और 1 जुलाई 1949 को भारत की संसद ने एक कानून पास करके ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और अगर इसके महत्व की बात करें, यह जो दिन है, देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को मजबूत बनाने और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कड़ी मेहनत को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। एक दिन खास और भी है, और आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। मनाया क्यों जाता है? दरअसल भारत के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर BC रॉय, जिनके नाम को जाना जाता है, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही उनका जन्मदिन है, और पुण्यतिथि दोनों ही होते हैं। हमारी जान बचाने वाले डॉक्टर और समाज को सुरक्षित रखने वाले जो डॉक्टर हैं, स्वस्थ रखने वाले जो डॉक्टर हैं, उनके मेडिकल जो प्रोफेशनल्स जितने भी हैं, उनके अमूल्य योगदान को याद रखने के लिए, उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और साथ ही साथियों, जब बात चली है दिन को मनाने की, तो आज एक दिन की चर्चा और कर डालते हैं। वो चर्चा है GST डे। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस डे, टैक्स डे। 1 जुलाई 2017 को भारत में वन नेशन वन टैक्स के विजन के साथ GST को पूरे देश में लागू किया गया था। सरकार ने 2018 से इस दिन को GST डे के रूप में मनाना शुरू किया। ये दिन भारत के टैक्स सिस्टम के सबसे बड़े सुधार, इनडायरेक्ट टैक्स के सरलीकरण और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते कदमों को दर्शाता है। होता यह है साथियों कि जब भी कोई नया काम होता है, नए सुधार होते हैं, तो उसमें समस्या लगती है, लेकिन फिर वो ड्रामेटिक चेंज भी लेके आते हैं। ऐसा ही रहा GST सुधार भी। GST का जब आगमन हुआ तो लगा एक बार कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसा कि हर परिवर्तन अपने आप में कुछ कन्फ्यूजन लाता है, वैसा कन्फ्यूजन तो GST एक बार लाया, लेकिन उसके बाद में केंद्र सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो, अच्छा टैक्स का रेवेन्यू मिला, कलेक्शन हुआ, और एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था आज तैयार हुई है। इसी GST को, इसी दिन को याद रखने के लिए आज के दिन को GST डे के तौर पर भी मनाया जाता है।

कार्यक्रम नमस्कार चूरू आप सुन रहे हैं आकाशवाणी केंद्र चूरू से। साथियों, आभारी होना बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है। एक आभार उनके लिए भी जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे गाने बनाए, इतने प्यारे प्यारे गाने लिखे, उनमें इतना मधुर संगीत दिया और इतनी शानदार आवाजों से ये गाने हमें दिए। ताउम्र इन गानों को हम सुनते रहे, आज भी सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। धन्यवाद एक बार इन सब गानों को बनाने वालों के नाम।

तो साथियों कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार चूरू। चूरू की बात करें तो चूरू का मौसम भी धीरे धीरे बदल रहा है। एक दौर था जब बारिश बहुत कम होती थी, लेकिन आज के इस दौर में लगता है कि शायद बारिश के मामले में ऊपर वाला मेहरबान है। कभी ना कभी तेज गर्मी होती है तो साथ में बारिश भी वो पहुँचा ही देता है। खैर, एक काम तो हमें करना ही होगा और वो है वृक्षारोपण का काम। मौसम आ रहा है बारिश का, इस मौसम में अगर पौधे ना लगाए, उनका ध्यान ना रखा, तो फिर साथियों इस धरती पे हमने जो पाया, जो हमने अपना जीवन को इस धरती पे पाया है, उसका एहसान नहीं चुका पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस बार जब बारिश हो तो उससे पहले कुछ पौधे लगाएं और उन पौधों को पूरा वृक्ष बनने में मदद करें।

तो साथियों आपको छोड़े जाते हैं लता मंगेशकर के गाए इस एक नायाब से गीत के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए अपने दोस्त कनिष्क को। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत

0: यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का

0: चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
1: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

0: नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आकाशवाणी केंद्र चुरू से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरसंगम।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में जगजीत सिंह की गाई हुई कुछ गजलें। एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगी जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस

0: सम्मेलन आज से जयपुर में दो दिन के सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में आज से लागू, केंद्र सरकार ने संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु, 20 से अधिक लोग घायल और पांचना बांध पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा, संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस दो दिन के सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI enabled data driven and secure digital governance रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। केंद्र सरकार ने VBG रामजी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रुपए प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम नहीं हो। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर VBG रामजी के तहत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार मजदूरी दर में 10% से अधिक की औसत बढ़ोतरी हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। VBG रामजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज से काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, दोपहर 1 से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल यानी मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजार में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। इस बीच तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम के अनुसार संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमतों में कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत घटकर 2,930

0: 30 रुपए हो गई है। इस निर्णय से रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और खाद्य तथा पेय पदार्थों के कारोबार से जुड़े व्यवसायों को राहत मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर धनावड़ा के पास आज अलसुबह एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार ने आकाशवाणी को बताया कि यह दुर्घटना एक स्लीपर बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद उसमें आग लगने से हुई। आग के बाद कई यात्री जलती हुई बस में फंस गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका चल रहा है। घायल यात्रियों में से अधिकांश मध्य प्रदेश और ऋषिकेश के हैं।
1: हरिद्वार से इंदौर जा रही थी बस और जाते टाइम इनका कोई ट्रोला से एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ ये तो इन्वेस्टिगेशन बाद मालूम पड़ेगा। 35-36 सवारियां होनी चाहिए इसमें, इसमें 22 इंजर्ड हुए हैं और 8 की कैजुअल्टी है। ये 2:30 से 3 बजे के बीच का है, सुबह रात को मतलब। और जो इंजर्ड थे उनको प्राथमिक उपचार चल रहा है, उनका वो ठीक है, मतलब ज्यादा सीरियस नहीं है, पर जो कैजुअल्टी हुई है वो काफी दुखदाई है। हो सकता है ट्रोला से टकराई हो या ड्राइवर को झपकी आई हो, ये तो अभी फाइनली इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। करौली जिले के पांचना बांध के पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझ गया है। जयपुर में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद लिखित समझौता हुआ। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम उपस्थित रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि विभाग 7 दिन के भीतर पानी छोड़े जाने की तारीख तय करेगा। इसके बाद नहरी तंत्र की जांच के लिए जल प्रवाह शुरू किया जाएगा। हमारी करौली संवाददाता ने बताया कि 2100 एमसीएफटी क्षमता वाले पांचना बांध से लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इस समझौते से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
2: समझौते के तहत गुडला क्षेत्र के 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि पांचना बांध के कमांड क्षेत्र की नहरों में भी जल प्रवाह शुरू होगा। जल संसाधन विभाग 7 दिन के भीतर पानी छोड़ने की तिथि तय करेगा, जिसके बाद नहरी तंत्र की तकनीकी जांच और टेस्टिंग शुरू की जाएगी। सरकार ने नहरों की मरम्मत के कार्य को भी गति देने का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि कमांड क्षेत्र के किसान नहरों में पानी छोड़ने और कैचमेंट क्षेत्र के किसान लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से अपने गांवों को पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने से जिले के हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: और अब मौसम। हवाओं में नमी के प्रभाव से प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी का असर है। दिन के समय कड़ी धूप के साथ उमस भी लोगों को प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग ने अगले 4-5 दिनों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में। 2 दिन के सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में आज से लागू। केंद्र सरकार ने संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु, 20 से अधिक लोग घायल और पांचना बांध पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा। संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे देशगान FM 100.7 MHz पर। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 9:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कविता पाठ। स्वर है सीमा का।

मेरी रचना का शीर्षक है जीवन अनमोल है, बहुमूल्य और दुर्लभ इंसान का जीवन व्रत है। कई दफा गलतियों से समय पूर्व होता अंत है, यातायात नियमों की क्यों हो

चालक बचा रहे, फिर ऐसी सजगता से ना कोई वाहन भिड़ंत है, जीवन मौत की संघर्ष से उलझता रहे जब घायल, तस्वीर वीडियो बनाते नर दिखते मृत्यु पर्यंत है, प्रत्यक्षदर्शी को गवाही का सबूत बनना होता है, यही सोचकर ना कोई अस्पताल पहुंचाते तुरंत है, खून से लथपथ को प्राणांत पूर्व मददगार मिले, ये जानिए वो नर इस युग का साक्षात हनुमंत है। आपने सुना तो होगा ना, ईश्वर का घटघट में वास है, इसका चलता फिरता उदाहरण, यही तो जीवंत है। मेरी अगली रचना का शीर्षक है वृद्धा की पीड़ा। वृद्धों को दिलों में रखो सम्मानजनक मुकाम, लावारिस दाह जैसा न हो जाए कभी अंजाम, जीवन संध्या के अंतिम पल घर ही रहे आश्रय, अपनों से बेदखल वो ठहरे न वृद्धाश्रम, गमगीन बैठी बैठी वृद्धा आप इति सोच रही, मेरी परवरिश का क्या खूब मिला है इनाम, लहू से अपने मैंने जिसका सिंचन किया था, पेट में सह सह कर किया था अपना काम, होती थी जब बेचैनी उन लातों को खाकर, कभी कभी अपनी सांसों को लेती थी थाम, जिसे विछिन करने को हुए थे इतने ताम झाम, उसे दुनिया में लाने को चीरी गई मेरी चाम, मैं मरी तो नहीं पर जिंदा भी कहाँ रही, अपनी बेख्याली में भी इतना ख्याल करती, मैं होती बदहवास अगर उन्हें लगती जुखाम, माँ मेरी है माँ मेरी है वो करते थे इतने झगड़े, दोनों को दुलारती लुटाती थी प्यार निष्काम, संतानों के भविष्य में ही अपना भविष्य देखा, उनकी सुविधाओं में जी भर कर लुटाए दाम, पुराने वाले वो झगड़े अब क्यों बदल गए थे, दोनों में तनातनी होने लगी सुबह और शाम, आज जरूरत नहीं उन पर बोझ बन गई माँ, ऐसा सोच सोच कर सिर में लगने लगी बाम, माँ तेरी है माँ तेरी है वे एक दूजे को सुनाते, बचपन वाले अब बदल गए राम और श्याम, बहला फुसला कर संपत्ति का किया बंटवारा, जब आंखियों से इतने अश्रु बहे हैं अविराम, दोनों ने मिल बैठकर सोचा एक ऐसा निदान, रोज रोज की परेशानी का करे काम तमाम, एक झटके में ऐसा तोड़ा जैसा ना था कोई रिश्ता, घर ही नहीं दिलों में ना रखा कोई मुकाम, लावारिस दाह जैसा न हो जाए कभी अंजाम। इसी क्रम में मेरी रचना का शीर्षक है बूंद और सागर। पानी की बूंद बूंद जुड़कर बना है विशाल सागर, इसमें से कतरा कतरा उड़ाकर बना पानी का बादल, उड़कर सागर से बूंद जब इतनी ऊंचाई में लहराई, मन ही मन बड़ा मुस्कुराई, वजूद पे अपना इतराई, अब बूंद को सागर में नजर आ रही थी इतनी कमियां, उसे रास आ रही थी गगनचुंबी बादल की गलबैया, चमक उठा चेहरे पर उसके अभिमान का इतना नूर, समझने लग गई स्वयं को श्रेष्ठ सी हूर, बादल को नारास आया देखते ही देखते, बादल ने किया दर्प उसका चकनाचूर, अचानक बूंद के दिल को लगा बड़ा सा झटका, बादल ने मारा ऐसा धक्का उसको गंदे नाले में पटका, जब तक उसका गुरूर न चटका उठा उठा कर पटका, उसे सागर की आई गहरी याद, मिलन की हुई फरियाद, कठिन थे जुदाई के पल, चाहने लगी दुआओं का फल, गलती का कर एहसास, मचल रही थी चाहत हर सांस, आंखों में बह चुका था प्रायश्चित का पानी खारा, गिरती पड़ती हुई निडाल, आंसू से भीगे थे गाल, चल रही थी धीमी चाल, तब नदी ने देखा उसका हाल, वह समझ गई माजरा सारा, बाहों का दिया सहारा, ले चलो मुझे उसके पास, बूंद ने की थी गुहार, नदी ने कहा सागर ने भेजा है मुझको, उसको है तुम्हारा इंतजार, अब समझ गई थी बूंद, बोली जल्दी जल्दी मुझे बहाओ, बूंद देखकर सागर बोला लौट आई है मेरी जीवन की बहार, तुम ही से मेरा वजूद, तुम ही से है मेरे जीने के आसार, हवा का संग तुमने किया तभी हो गया था मैं बेकरार, सामने पाकर पनाहगार, बूंद दिख रही थी शर्मसार, बोली दो नहीं एक है हम, बिछुड़ कर जीवन है निराधार, आओ आत्मा परमात्मा से मिलकर हो जाए एकाकार, सबको मिले नदी सा सत्संग तो जीवन का बेड़ा पार। इसी क्रम में मेरी अगली रचना जिसका शीर्षक है मन की बातें। जिंदा है बचपन, जिंदा है बच्चन।

0: बचपन तो दिल भी जवान है, जिंदा है ललक, जिंदा है ललक तो ख्वाहिशें उन्वान है। मचलती हसरतों का, मचलती हसरतों का गला न घोटा जाए तो दूर तलक इनका भी अपना आसमान है। मानो तो जिंदगी संघर्षों का जखीरा है, अटूट श्रृंखलाओं में होते रहते इम्तिहान है। मिट्टी से बना पुतला एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, फिर इंसान किस बात के लिए कर रहा गुमान है। वशीकरण तो मन का बाकी सभी निष्काम है, बिन परवाजों के भर लेता कितनी उड़ान है। बिन कहे सुने हो जाती है कितनी ही बातें, सीमा इन एहसासों की भी अपनी जुबान है। इसी क्रम में मेरी अगली रचना जिसका शीर्षक है तू चल तो सही। मिलता नहीं अनायास, प्रयास कर तू चल तो सही। सामना करने से होगी आसान डगर, तू चल तो सही। अपनी अपनी विपदाओं की हर कोई कहता है व्यथा, इनको सुनकर ना जाना कहीं ठहर, तू चल तो सही। गिरना पड़ना और संभलना, मुंह में फिर उठाती दाना, नन्नी चींटी सा ना मिलेगा रहबर, तू चल तो सही। माना मुश्किल है डगर, डर कर ना पहुंच पाओगे शिखर, तुम्हारे चलने से पूरा होगा सफर, तू चल तो सही। एक लवैसा धर धीर लक्ष्य पे चलाते रहना तीर, अपने संघर्षों से तू जाएगा निखर, तू चल तो सही। आज नहीं तो कल एक दिन मिल ही जाएगा फल, क्योंकि रात के बाद आती सहर, तू चल तो सही। सुबह शाम हो या दोपहर, सीमा न रख मेहनत में कसर, मीन अक्ष पर रख अर्जुन से नजर, तू चल तो सही। इसी क्रम में मेरी अगली रचना का शीर्षक है आदर्श विवाह। आदर्श विवाह, जिस जोड़े की दिल से ना निकलती दर्द भरी आह है, आनंद विभोर होकर जीवन से निकले वाह, वही तो है आदर्श विवाह। उर हर्षनाद करता हुआ सुनाता मीठी मीठी सरगम, जब बेखबर पलों का बनता कोई खेर खवा, वही तो है आदर्श विवाह। निर्मूल उखाड़ फेंके साथी सभी गमों के कांटों को, जीवन वाटिका में लगाता विटप खुशी के अथा, वही तो है आदर्श विवाह। तन का गठबंधन जब मन का भी बन जाता है, तब हुक जगे पाले ने अंतस की कशिश था, वही तो है आदर्श विवाह। दिया बत्ती सा पूरक बनकर जगमगाए जीवन, नजरअंदाज करे जो आकर्षक मोड़ होते हैं श्या, वही तो है आदर्श विवाह। निश्चल समर्पण से मिट जाता है हर अधूरापन, अटूट विश्वास को जन्म देता जहां प्यार बेपनाहा, वही तो है आदर्श विवाह। चाहत की गगरी पर शक का कंकर होता है बेहसर, बस जन्मी दिल की चाहते ना रहे मरमान तक कराहा, वही तो है आदर्श विवाह। आहा से शुरुआत वाह ना होता कभी खत्म, बुद्धिमता से सुलझ जाए हर मसले बगर गवाह, वही तो है आदर्श विवाह।
1: अभी आप सुन रहे थे साहित्य सुगंध में हिंदी कविता पाठ, स्वर था सीमा का।

साल 1991 में यानी 1991 में ये फिल्म आई हिना, अपने आप में एक अलग ही म्यूजिकल हिट साबित हुई और गाने तो बस पूछिए मत।

28 जून साल 1991 में रिलीज हुई हिना, इसमें संगीत रविंद्र जैन का, वही रविंद्र जैन जो जन्म से ही देखने में सक्षम नहीं थे लेकिन म्यूजिक की समझ एक शख्सियत में इस तरह हो सकती है और इतना शानदार संगीत भी कोई दे सकता है वो रविंद्र जैन को देखकर ही समझ में आता है। ऋषि कपूर, ज़ेबा बख्तियार और अश्विनी भावे, शम्मी कपूर, इन कलाकारों से मिलकर बनी ये फिल्म हिना।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

साथियों, बात करें हिना फिल्म की तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर आधारित एक भावनात्मक प्रेम कहानी है फिल्म हिना। यूं तो इस फिल्म की कल्पना राज कपूर ने की, लेकिन इनके निधन के बाद इसका निर्देशन रणधीर कपूर ने किया।

ऋषि कपूर जिसका इस फिल्म में नाम चंदर है, उनकी शादी भारत में चांदनी से होने वाली होती है, लेकिन एक दुर्घटना के बाद वो याददाश्त खो बैठता है और गलती से पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाता है। वहाँ एक भोली भाली लड़की हेना उसे बचाती है और उसकी देखभाल करती है। चंदर को अपना नाम तक याद नहीं रहता, इसलिए सब उसे चांद कहकर बुलाने लगते हैं और धीरे धीरे हेना और चंदर एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं।

चंदर यूं तो गलती से दूसरे देश में पहुंच जाता है, लेकिन एक तरफ इंतजार कर रही है उसकी सगाई होने वाली वो पार्टी, वो महफिल जहां उसका इंतजार हो रहा है। वहां किसी को नहीं मालूम कि उनका जो दूल्हा है वो कहीं खो चुका है, और वो भी किसी दूसरे देश में।

गाने में जितना संगीत शानदार है रविंद्र जैन का, जितना इसका फिल्मांकन है, उतना ही इस गाने में नृत्य जो कलाकार अश्विनी भावे ने किया बहुत ही शानदार रहा। उस जमाने का अपने आप में बहुत ही पसंद किया जाने वाला गीत था ये।

पहुंचने को तो चंद्र अपने देश पहुंच जाता है, लेकिन उसकी जो मदद करती है वहाँ, जिसने उसकी एक तरीके से मदद भी की थी इलाज कराने में, और कहीं ना कहीं दोनों में प्रेम पनपता है, उसकी मौत हो जाती है। खैर, इस दुख के साथ ही सही, लेकिन चंद्र की घर वापसी होती है, भारत पहुंचता है और सही सलामत पहुंच जाता है।

0: FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम। कार्यक्रमों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15।
1: आना अभी जाना इंतजारी है तेरी।
0: फिल्म मुल्क।
2: सब सखियों का भी अभी आरा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
1: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर हमसा है।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
1: बेखबर
3: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
4: हाँ।
3: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़ और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
4: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
3: तो मुल्क के हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का क्रमवार आप बताए और रचना प्रक्रिया बताए।
4: मुल्क का गाना आप सुनाए, पिया समाए
3: जी,
4: बहुत अच्छा गाना,
3: बहुत पसंदीदा कबाली।
4: हाँ,
3: कबाली है।
4: यस यस,
3: कबाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
4: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
3: जी
4: में।
3: बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है
4: जी।
3: सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
4: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
3: जी,
4: ये आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी।
3: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
4: जिक्र किया जाए,
3: दर्ज होती है आज के समय में।
4: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
3: बिल्कुल।
4: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
3: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कवाली और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान हाँ, खुराना हाँ, ने गाया भी है
4: जी। हाँ जी, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप
3: जी।
4: बिल्कुल।
3: तो
4: आर्टिकल 15 से
3: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
4: उस गाने की कहानी ये है के
3: कोई दिलचस्प बात हो।
4: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ।
3: हाँ।
4: आप यूं समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
3: पड़ा है इजाजत फिल्म
4: लौटा दो। हाँ। तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
3: अरे क्या बात है।
4: हाँ, उल्टा मतलब के
3: तो, सामान देना है।
4: हाँ, वो कह रहे कि वो कह रहे लौटा दो।
3: हाँ।
4: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
3: हाँ।
4: ठीक है,
3: चेक करना है यहाँ पर।
4: हाँ। तो उसमें जो गाना है। हाँ।

0: वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मूमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है, है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मूमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
0: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो, लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ। तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना, इंतजारी
1: जी। हाँ, तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
0: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना, आ भी जाना, इंतजारी है तेरी।
1: क्या बात है, वाह।
0: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर
0: है ना।
1: तो
0: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई, ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुहरी इंतजारी दे, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना, आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
1: जी।
0: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना, आ भी जाना, इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समय हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए।
0: तो
1: अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: अभी गाना लिख दो जल्दी।
1: और हम जो हैं, मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए, आप सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी यकजहती होनी चाहिए, ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो हैं वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो हैं एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है,

0: भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
1: खुदा है,
0: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और

0: वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगेंगे,
1: रंग दिखाई
0: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिल के भई मैं उजली।
1: वाह क्या बात है,
0: सातों से मिल के
1: भई
0: मैं उजली, कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: क्या बात,
0: पिया समाये पिया समाये, जिया में मोरे पिया समाये। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ।
1: जी जी।
0: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, एक सब एकजुटता का संदेश है और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा,
1: हाँ,
0: M.M. करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं, और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है, और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट,
1: पूजा भट्ट, उन्होंने डायरेक्ट की थी। और ये गाना जो है, M.M. करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे, मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा, जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके, लेकिन फिर वो रवां हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की दी गई,
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उन गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर,
0: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था। फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना
0: जी।
1: कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
0: जी।
1: तो उसमें गाना था वो, के ने गाया था वो, ऐ बेखबर ऐ बेखबर
0: जी जी, हाँ,
1: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था, जाने जा
0: जी,
1: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत सारे

0: गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो, तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ।
1: जी जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आए बेखबर
1: सुनते हैं। हाँ। ये गाना

0: शिव कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़।

0: आपके बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
1: जी,
0: तो वो गजल सिंगर होते थे
1: जी जी,
0: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
1: जी, बिल्कुल
0: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
1: नाम शोहरत
0: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों,
1: जी जी, जी।
0: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है ना, इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे, लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे।
1: जी जी।
0: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था।
1: जी जी।
0: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा, भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता, दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को तो जो गाने गवा रहे वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
1: जी जी,
0: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
1: जी जी,
0: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा, चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
1: दर्ज है।
0: हाँ, 400-500 गाने होंगे।
1: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
0: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
1: जी
0: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
1: जी जी।
0: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे, बहुत अच्छे गाने।
1: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था,
0: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
1: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
0: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात।
1: अच्छा,
0: तब मैं सूरत में रहता था
1: जी जी,
0: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
1: अच्छा।
0: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई, और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी फिल्म थी, अक्षय कुमार
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
1: वहाँ तनवीर खान भी के।
0: हाँ। तो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी

0: थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
1: जी।
0: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए, तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी
1: जी।
0: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ क्या बात है।
0: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: ओह क्या बात है।
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे
1: जी जी,
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
1: जी।
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
1: जी।
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजय पत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
1: ओ अच्छा, क्या बात है भाई।
0: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
1: जी,
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब

0: वो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई जी, फिल्म जी. में उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना वो ये था कि वाह हो रही है भोपाल का माहौल है 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है जी. ये उस टाइम की कहानी थी और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है तो ये सिचुएशन थी
1: जी,
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है तो वो मैंने लिखा था मुझे पसंद है वो जी, जो राइटिंग है और वो गाना इतना मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया है ना दीदी मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे
0: अरे ये गाना तो मेरा था तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया
1: बड़ा कॉम्प्लीमेंट था
0: हाँ तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
1: जी।
0: सुबह हुई दिन निकला है सुबह हुई दिन निकल रहा है नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है
1: क्या बात
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है
1: बहुत
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है डेली ये गाना बजता है
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए
0: मधोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे मधोशी है

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है। अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर, आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं।
0: जी
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा। मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी
0: जी
1: है,
0: जी
1: उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसकी कुर्बानी ने।
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14 वर्ष।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज्में लिखी जाएं। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायणें लिखी है,
0: दास की रात
1: तुलसीदास की
0: चरितमानस।
1: जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे।
0: उर्मिला सखी वे मुझसे कहकर जाते, बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है। मैंने एक नया रास्ता निकाला, पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक, जीता गया और
0: जी
1: लिखता गया। इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस
0: ओह
1: किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था मैं,
0: हाँ
1: तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों हैं उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था। मेरा जो टॉपिक था जंगल, उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मुझे, मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है,
0: जी
1: अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है। तो वो जो है इस तरह

0: से उसका नाम बनवास रखा गया और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले। और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है और किस तरह से, मतलब हिंदू माइथोलॉजी को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है।
0: पिछले 3 साल से लगातार। और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो हाँ, बहुत शुक्रिया
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है, और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था जहाँ अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव हैं, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। आपके ही अल्फाज हैं, आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूँगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर के अंदाज में आप कहें, एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है, ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है।
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो आप आगे बढ़े। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
1: क्या बात है।
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल पर।
0: उनके हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए, ज्ञान जो है ना शायरी में, ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तख्लीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह।
0: ये सीख है हम सबके लिए। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से

0: आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारतीय परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
1: आप भी नमस्कार। बहुत शुक्रिया ममता जी।
2: जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Taranga, taranga.
1: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कर...
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से थोड़ी देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार होंगे कालूराम प्रजापत एंड पार्टी। दिन में 1 हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर आंगन 1:05 पर। चर्चा होगी स्कैम के खतरों से कैसे बचें, रात के भोजन के बाद सैर जरूर करें, चाय या कॉफी का सेवन कम से कम करें। दिन में 2 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने दिन में 2:30 पर।

शाम 4:58 पर हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी, शाम 5 बजे चर्चा होगी। वन महोत्सव सप्ताह, डॉक्टर वीसी राय की जयंती एवं पुण्यतिथि, पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि, नेशनल डॉक्टर्स डे, डिजिटल फिंगरप्रिंट, इंटरनेट पर आपकी पहचान, जानकारी दी जाएगी। पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम में विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना। शाम 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। खेती और गृहस्थी, यह कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। चर्चा होगी खरीफ फसलों की बुवाई संबंधी सावधानियां, कृषि कार्यों में महिलाओं का योगदान, बीजोपचार का महत्व। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता रात्रि 8 बजे।

रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या रात्रि 9 बजे News@9 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। चर्चा का विषय है कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, समय रहेगा रात्रि 9:30। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफी और मुकेश को। फिल्म का नाम है समझौता। गीत रचना वर्मा मलिक की है और संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की।

हंसती जख्म फिल्म का गीत अभी आपने सुना, गायिका थी लता मंगेशकर। लीजिए कार्यक्रम के अगले पायदान पर सुनिए किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है याराना।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अब आपके लिए है विश्वनाथ फिल्म का गीत, गायिका है लता मंगेशकर।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म का नाम है सीता और गीता। गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत रचना आर डी बर्मन की।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे,
1: घटा के संग संग,
2: संभालना।
1: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

समीर की गीत रचना सुनिए। संगीत रचना है आदेश श्रीवास्तव की। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम बाबुल।

0: अफसर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी नितिन मुकेश और अलका याग्निक की। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

जावेद अख्तर के बोलों को सुनिए शिव हरि की धुन पर। आवाजें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की। फिल्म का नाम सिलसिला।

दूसरा आदमी फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
1: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
1: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
2: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं, और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
2: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ, पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
2: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
2: जी,
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
2: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
5: धन्यवाद सर।
3: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
6: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
7: यस मैम।
6: वाह, क्या बात है
8: मैम।
6: हाँ बेटी,
8: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
6: बिल्कुल कहा।
8: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
6: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
8: जी, पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा

0: करने जा रहे हैं।
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
2: यस मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: जी मैम।
5: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह।
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
0: जी।
1: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है।

0: बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से

0: मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद मैम।
3: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
4: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती है, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है।

0: इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
0: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
0: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना। ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
0: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
2: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी, मुखिया जी!
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने तीन मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
6: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं।
3: मुखिया जी, मुखिया जी,
6: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
3: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
6: चढ़ रहा है। अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
3: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
6: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
3: जैसी आपकी मर्जी।

अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? मैं ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच ही गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कालूराम प्रजापत एंड पार्टी से लोक भजन। प्रस्तुत है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

0: माटी के सुर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कालूराम प्रजापदन पार्टी को। एक बजने वाले हैं कुछ ही पलों में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार लेके जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा है कि डिजिटल इंडिया विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान ने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा देशवासियों के जीवन को अधिक सुगम बनाया है। उन्होंने कहा कि ये पहल देश में सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ई गवर्नेंस से प्रशासन और जनसेवाओं की पहुंच में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान और यूपीआई जैसी पहलों से आम नागरिकों को बहुत सुविधा मिली है तथा छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी कारोबारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एआई और साइबर सिक्योरिटी प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई कई महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य में एआई और मशीन लर्निंग एआईएमएल नीति लागू की गई है। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल जन शिकायतों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: राजस्थान संपर्क आज प्रदेश भर में जन अभियोग निवारण का प्रभावी मंच बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर हर महीने 2.5 से 3 लाख शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो रहा है। मैं खुद राजस्थान संपर्क पर आने वाली जन शिकायतों को सुनता हूं और हर शिकायत का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित भी करता हूं। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती है, बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मार्ट परियोजना, ई मित्र व्हाट्सएप सेवाओं तथा राजस्थान इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांव में आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज सुबह हुए हादसे की विस्तृत जांच के लिए जिला प्रशासन ने जांच दल का गठन किया है।

0: जिला कलेक्टर डॉ सौम्या झा ने दल को दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आज अलसुबह धनावड़ा के पास एक स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लगने से बस में सवार 8 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के लिए बंद हो गए हैं। मॉनसून और वन्य जीवों के प्रजनन काल को देखते हुए 30 सितंबर तक पर्यटन गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी। इस दौरान वन्य जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने और वन क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाली जिले के जवाई वन्य जीव क्षेत्र में 1 अक्टूबर से फिर से सफारी का संचालन हो सकेगा। इसी तरह सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर एरिया भी पर्यटकों के लिए बंद होगा। हालांकि वफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां जारी रहेंगी। उधर सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू हुआ पर्यटन सत्र कल समाप्त हो गया। बीते पर्यटन सत्र में 6,77,000 से अधिक देशी विदेशी पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया जिससे राज्य सरकार को लगभग 70 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर। ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम घर आंगन सुनन हाली सगली साथण भेनारो घणे मानसो स्वागत है बाके आपरे कार्यक्रम घर आंगन मायने। और आज थारा सु बदलावण करने वास्ते मैं उपस्थित हूँ थारी बहन विनोद। तो स्वीकार करो बहनों मेरे काने सु मोकला मोकला राम राम।

सांतरा से ई गणेश जी की वंदना के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करा बेनो। और आज के कार्यक्रम रे भाई ने अपनी चर्चा का विषय है स्कैम के खतरा सु क्यूकर बचा। तो आजकल को ओ युग की अगर आप बात करा तो ओ युग है तकनीकी को, और ये तकनीकी युग के मायने आप घर बैठे हाँ बहुत सारी चीजा की खरीदारी करा हाँ, और भी बहुत सारा जका लेन देन है वह आप मोबाइल का माध्यम सु और ऐप का माध्यम सु डिजिटल माध्यम सु करया करा हाँ। तो इस सु के वे के वो अपनी सुविधा तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा अपनो अपने लिए सोरो काम भी हो गयो, पर सुविधा के साथ साथ है आपने एक कह करे कि हर चीज की कोई ना कोई नकारात्मक पहलू भी हो ही करे। तो इको भी है कि आप धोखाधड़ी का शिकार भी बहुत ज्यादा हुआ हाँ, जद सु आपा डिजिटल लेन देन करनो शुरू करियो है बिक बाद सु आपा देखने ने आपा ने मिले है कि बहुत से लोगों के साथ ठगी होगी है, और ठगी भी कहल की कबाने ठाई कौन पड़े ठगिया पछा फिर पड़े कि वह ठगी का शिकार हो गया है। तो इसे कोई स्कैम या धोखाधड़ी आपने सागर नहीं हुए ये वास्ते आपा ने चेत तो करना बहुत जरूरी है। जब आप जागरूक रहेंगा सचेत रहेंगा तो इसी ठगी से बच सकांगा। स्कैम और साइबर धोखाधड़ी है इस बचने को से सुसोरो जो को तरीको है बहनों वो है कि सतर्कता बरता। कोई भी अनजान जो को अपने कन फोन आवे मैसेज आवे या अपन कोई लालच दे जैसे कि लॉटरी निकल गई है या फिर बुहारी डिस्काउंट चल रहे है या थाने कोई बहुत बड़ो लोन मिलन नाल है, तो ए इसे जका फर्जी अपने कन फोन है मैसेज है ए अलका जका लिंक आवे तो वहां पर अपन तुरंत भरोसा ना करा और अपना सतर्कता है जिकी बैठे दिखावा। आपने जिकी बैंक की डिटेल है बैंक को पासवर्ड है या फिर अपनी कोई ओटीपी है या कि कोई भी जानकारी जगह सु आपने पिसा उड़ने को खतरो रहे तो भी सु आपा बच के रवा कोई के सागे साझा ना करा। तो स्कैम से बचने का और भी कई बार के है कि वे भ्रामक विज्ञापन आपने देखने मिले हैं जका टीवी के ऊपर भी आवे हैं और अखबार में भी आपा देखने मिला हाँ, लेकिन बाकी जो की सच्चाई है भी कि आपा जानने की कोशिश करा जो की आधिकारिक वेबसाइट है बैठे सु ही आपा कोई खरीदारी करा। और एक साथ ही जब आपा पैसा को लेन देन करा डिजिटल माध्यम से तो एक भरोसे की वेबसाइट के साथ ही करा। अपना जगह ये जो लेन देन का ऐप है तो वह ऐप के माध्यम से आपा जब लेन देन करा तो पासवर्ड है वो बहुत चोखो तरह और ऐ को डाला कि भी कोई तोड़ नहीं कर सके। साथ ही आपा एक चीज और ध्यान में रखा कि आपने बैंक की डिटेल कोई कसा गई साझा ना करा। साइबर जो स्कैम है भी सु बचने के लिए आपा ने कई प्रकार की सावधानियां हैं जिकी बरतनी चाहिए जैसे कि आपनी जिकी व्यक्तिगत जानकारी है बा सुरक्षित रखनो। कोई कई सागे आपा आपनी जिकी निजी जानकारियां हैं वे साझा ना करा जैसे कि आपनी कोई ओटीपी हुई पिन नंबर होया कोई भी जो को बैंक को अधिकारी है या सरकारी कर्मचारी है वे आपने सु कदे भी ओटीपी या पासवर्ड को नहीं मांगे। और ए चीजें है जो कि हमेशा ही गुप्त रखी जावे है तो आना आपा गुप्त ही रखा समय समय पर अपनो पासवर्ड है बेन भी बदलता रहा ताकि अपनी सुरक्षा है जो कि बनी रहे। साथ ही अपना जका दस्तावेज है बन संभाल के रखा जैसे कि अपनो आधार कार्ड है पैन कार्ड है बैंक की पासबुक है बी की फोटो कॉपी है या कि जिकी चीजें है वे कोई भी अनजान व्यक्ति के सगे आपा शेयर नहीं करा बतावा नहीं। और अनवेरिफाइड जिकी वेबसाइट है वहां के ऊपर कदे ही ये चीजें आप अपलोड ना करा। कई तरह की ठगी है जिकी आपने आज के समाज में देखने मिले है। कई बार आपन रिश्तेदारों के महीने आर्थिक तंगी को प्रलोभ को

और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पीछे देखा कि कई प्रकार की ठगियां हुई है। और तो पैसा जद भी मांगे जावे हैं तो आप भी चीज ने पहली कंफर्म करा भी जाना कि वास्तव में आपने कोई रिश्तेदार ने जरूरत है या नहीं है, क्योंकि बहुत बार अपना व्हाट्सएप है जो का हैंग हो जाए, अपना फोन का है जो को हैंग हो जाए, और भी अपना कई ऐप है जो का हैंग होने के सागे ही अपनी जी की सारी जिकी निजी जानकारियां हैं वह हैकर कन चली जावे और बी के बाद आपने ठाई कौन पड़े का आपा कद लूट गया। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही जिका संदेहास्पद फोन है बासू आपा दूर रहा। जे कोई आपने खुद ने अपने कन कोई फोन आवे और वो खुद ने इनकम टैक्स को अधिकारी बतावे, पुलिस अधिकारी बतावे या बैंक को अधिकारी बता के आपने डरावे या डिजिटल अरेस्ट की धमकी देवे, तो आपा डरा नहीं बल्कि घबरावा भी नहीं, डरा भी नहीं, बल्कि सतर्क रह के और बहुत ही होशियारी से भी चीज को सामना करा, क्योंकि ये सब आपने डराने धमका के और एक लूटने का तरीका ही, जबकि जो पुलिस अधिकारी है वे कदे ही आपने फोन पर अरेस्ट कौन करे। इस चीज को आपने ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने कन इसी कोई धमकी आवे तो तुरंत आपने भी अगेंस्ट कार्रवाई है जिकी जरूर करनी चाहिए। आपनों जो यूपीआई है वो खाली पैसा भेजने का काम आवे, यूपीआई से कदी आपा नंबर पूछ के कोई अपने को पैसा अपने कन कौन भेज सका, यानी कि जब आपा कोई दूसरे ने पैसा भेजा जो भी टेम ही वो काम आवे और अपन खुद के फोन में ही लगाना हुए हैं, न कि कोई दूसरे ने बताना हुए। तो कोई यह कहे कि भाई मैं थार कने अकाउंट में पैसा डाल रहे हूँ, थारी लोटरी लगी है या फिर थार ने कोई बहुत बड़ो ऑफर मिलो है या फिर ते कुछ पैसा इनाम में जीते ही, तो बां के लिए थे थारा हेज का यूपीआई नंबर बताओ ताकि थारकन पैसा भेज दिया जावे। ये सब आपने ठगने का तरीका ही, तो ए ठगी सो आप बच के रवा, सावधान रवा कि कदे ही यूपीआई नंबर सो अपने कन पैसा को नहीं भेजा जावे। पैसा भेजने के लिए अपना मोबाइल नंबर ही काफी होवे। ई वास्ते आप कोई के सागे अपना यूपीआई नंबर है वह साझा नहीं करा। एक साथ ही कई प्रकार की जिकी फाइल है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, एलका जका ये चैनल है, आके ऊपर अपने अनजान जो फाइल आवे बन कदे ही स्वीकार नहीं करनी है। जैसे कि कदे बार अपने कने नौकरी को ऑफर आवे, कदे सरकारी योजना को ऑफर आके और भी कमाई ने अपन ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलियो जावे, तो इसे ऐप आप कदे डाउनलोड ना करा, क्योंकि एक बाद आपनो फोन है जो को बिल्कुल काम करना ही बंद कर देगो और अपनी सारी जिकी जानकारियां है, अपनी निजी जो व्यक्तिगत जानकारियां है बस अगली हैकर कन चली जावे और भी के पाछे आपनो अकाउंट है जो को खाली हो जावे। तो इस चीज को अपने विशेष ध्यान रखना है कि अपने फोन की जो अंदरूनी जानकारियां हैं वे कोई कहीं सागे आपा साझा नहीं करा, अनजान वेबसाइट्स ने आपा नहीं खोला, अनजान लिंक के ऊपर आपा क्लिक ना करा और अनजान जो का ऐसा कोई ऐप है प्रलोभन वाला बन कदे ही अपने फोन में डाउनलोड नहीं करा। एक साथ आपा एक काम और कर सका कि आपनो जो पासवर्ड है भी ने एक बहुत ही अच्छी तरह सुरक्षित रखा और पिन नंबर आया का डालना कि कोई भी आसानी से पहुंच ना पावे। सागे ही जगह पब्लिक वाईफाई है जैसे कि रेलवे स्टेशन पर लगेड़ा हुए हैं, बस स्टॉप पर लगेड़ा हुए हैं, तो बांको उपयोग ना करा, क्योंकि ए अपने फोन के अंदर वायरस आ जावे है आंसू और फिर अपना फोन है जगह हैंग हो जाए। एक और ये चीजा जो है अपनी जानकारी के अंदर रखनी बहुत जरूरी है कि आप क्या क्या है जगह डिजिटल माध्यम से ठगी का शिकार हो सका। हाँ, जागरूक बना, चारों तरफ देखा और आगे आए दिन होने वाली घटनाओं के ऊपर नजर रखा कि के प्रकार की ठगियां हैं जो कि आजकल चल रही हैं। बहुत बार आपने कोनो ऑनलाइन खानो डिलीवर करा कोनी और फिर भी आपने कन खानो आ जाए है या फिर कोई पार्सल का बहाने सो आपने कन कोई ओटीपी पूछे है, तो ऐ चीजा को आप विशेष ध्यान रखा कि जब आप कोई चीज ऑर्डर ही कौन करी, जब आप कुछ मंगवाए ही कोनी, तो आप ओटीपी आप के नाम के देवा, अगर आप भी वक्त ओटीपी बता दी तो आपनो जो को खातो है वो खाली हो सके है। एक साथ ही डरने की जरूरत को नहीं हुए, घबराने की जरूरत को नहीं हुए, अगर आपने सागा है कि कोई घटना घट भी गई है तो आपने बहुत ही सावधानी से और सतर्कता के साथ काम करना है और जो आपने साथ है कि धोखाधड़ी करे है भी कि तुरंत आपने सरकारी प्लेटफार्म पर भी की शिकायत करनी है। जैसे कि जो सरकारी हेल्प नंबर है 1930 भी के ऊपर आप कॉल करके और धोखाधड़ी की शिकायत करवा सका। हाँ, इसी सेवा है जो कि 60 मिनट के मायने मायने कार्रवाई करे है और आप

जकी ठगेड़ी रकम है भाभी पाछी दिलाने में मदद करे है। साथ ही जका सरकार का जो जारी करेगड़ा ऐप है या पोर्टल है बीके ऊपर भी आपा शिकायत कर सका जाए कि संचार साथी ऐप है तो बीके माध्यम से आपा अपनी शिकायत है जकी तुरंत दर्ज करवा सका और धोखा की धड़ी की जो सूचना है बस आपा पोर्टल पर देके और आप इको उपयोग करके आपा बहुत सारा जगह ये ठगी का मामला हुए बन पकड़वाने में भी मदद कर सका और अगर आपने सागत कोई धोखाधड़ी हुई है तो तुरंत भी की शिकायत करा तो आपनों जो को गेड़ो पीसो है वो भी पाछो आ सके है। तो दूर संचार विभाग की जिकी चाकसू पोर्टल है बिको उपयोग करा और सतर्क रहवा सावधान रहवा और कठे ही अनजान जगह के ऊपर या अनजान लिंक के ऊपर कदे क्लिक ना करा।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: अंतराल रे पछे कार्यक्रम रे भाई ने लौट रावा भेणो, और अब चर्चा करा अपने स्वास्थ्य की। तो जब आप रात को भोजन करा तो बी के बाद आपने सैर करनी कितनी जरूरी है। पर स्वास्थ्य को ध्यान रखनो आपने हर भेण को ही जिम्मेदारी है कि वह आपका स्वास्थ्य को ध्यान रखे। आपा अपने ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हुए, घर की, परिवार की, टावरा की, बडोड़ा की, लेकिन भी का साथ साथ ही आपने खुद को ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। यानी कि स्वास्थ्य के प्रति अगर आप लापरवाह हो जाएगा तो फिर आप बाकी जो अपने रिश्तेदार की, अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करा हाँ सही प्रकार से कर कौन पावांगा। ये वास्ते पहलो काम वही हुए अपने लिए जरूरी है कि आप स्वयं पहले खुद को ध्यान रखा। ये वास्ते कुछ जकी हेल्दी या कवा की स्वस्थ जकी आदता है बने आप जरूर अपनावा। आप हर कोई का स्वास्थ्य को ख्याल करा हाँ, खाने पीने से लेर बाकी हर एक्टिविटी हर दिनचर्या के ऊपर अपनी नजर रवे है और बने सही प्रकार से आप व्यवस्थित भी करा हाँ। लेकिन जब बारी खुद की आवे तो बड़ा ही लापरवाह हो जाए हाँ। पर बेणो आपने अपने लिए भी समय निकालनो है, खुद के स्वास्थ्य को भी अपने विशेष ध्यान रखनो है। ये वास्ते आप थोड़ी सी सावधानी आप खुद के लिए बरतनी बहुत जरूरी है। जैसे कि रात को जब आप भोजन करा तो बी के बाद आपने सैर करनो की तो जरूरी है। इसके ऊपर ही आज अपनी चर्चा है। जब आप रात ने खानो खावा तो खानो खाया पछे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आपने हल्की फुल्की सैर है जो कि जरूर करनी चाहिए, क्योंकि खानो खाया पछे थोड़ी देर घूमनो अपने लिए बहुत फायदेमंद हुए है। अपने पाचन तंत्र में सुधार आवे है, पेट फूलने या गैस होने की जो समस्या है बाबी कम हुए है। तो ये चीज को अपने ध्यान रखना है कि जब भी आप खानो खावा तभी का तुरंत बाद आप घूमा जरूर, क्योंकि खानो खाया पाछे घूमने से जो अपने खून के मायने शर्करा को लेवल है, स्तर है, वो भी नियंत्रित रहे जब आप खानो खाया पाछे घूमा। तो बहनों रात के खानो खाने के बाद टहलने से अपनी

अंतराल रे पाछे कार्यक्रम रे भाई ने एक फेरों स्वागत है बहनों आपको। और अब चर्चा करा आपा अपनी आदतां की, जे की आपा मेहमान नवाजी की अगर बात आवे तो आपा सब पहली अपने घर आयडे मिनख ने पानी दिया और पानी पछे देवा चाय। तो चाय और कॉफी को चलन ऐसा को है कि आपा कोई को भी सत्कार करनो चाय कॉफी के बिना वो अधूरो ही होए। तो चाय कॉफी है जो कि आपने जीवन में अया बस गई है कि एक के बिना अपना दिन की शुरुआत भी को नहीं हुए। और जब भी आप थका हारा और थोड़ा सा परेशान हुआ तो एक कप चाय है जो कि आपने ताजगी भी देवे। चाय एक ऐसे पेय अपने जीवन में बन चुकी है जो अपने जीवन को एक कह कर हिस्सों से ही बन गयो है। पर बहनों चाय कॉफी है यह भी अपने स्वास्थ्य ने नुकसान देवे है। ज्यादा चाय कॉफी जब आप पीवा तो कई प्रकार का विकार है वे अपने शरीर के मायने घर कर जावे हैं। तो चाय कॉफी का अगर आप शौकीन हाँ तो थोड़ा सा अपन विचार करने की जरूरत है बहनों कि चाय कॉफी अपने अपने जीवन में थोड़ी कम करने की जरूरत है। चाय और कॉफी को ज्यादा सेवन करनो कई प्रकार का रोग है जिसका आपने अंदर ले सके है, जैसे कि अनिद्रा की शिकायत हो सके है, पेट में एसिडिटी बढ़ सके है, घबराहट होने की समस्या हो जावे, और तो और आपने अंदर आयरन की कमी भी हो सके है, यानी खून की कमी का कारण चाय भी हो सके है। तो यह चीज है जो कि स्वास्थ्य की जी की जांचा है या फिर स्वास्थ्य का जो सर्वे करे गए हैं भी कमाई ने सामने आई है कि चाय कॉफी को ज्यादा सेवन करने से अपने अंदर खून की कमी भी हो सके है। विशेषज्ञ जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ है बाकी माना तो दिन भर में तकरीबन 3 से 4 कप से ज्यादा अगर आप चाय पी ली तो वो कैफीन अपने बहुत नुकसानदायक है। एक सेवन सु अपने वो जो चाय और कॉफी है कम से कम अपने एको सेवन करना चाहिए। कुछ हल्का सा व्यवहारिक जो तरीका ही जेबा ना आप अपनावा तो धीरे धीरे करके ही सही ये चाय और कॉफी की जी की आदत है या लत है या यूं कहवा कि अपने अंदर तलब है भी सू आप धीरे धीरे बाहर आ सका। हाँ इसके लिए अपन करनो की है कि जो आप दिन भर में चाय पीवा हाँ 2 पीवा हाँ 3 पीवा हाँ 4 या कई कई बार आप 5 और 6 तक की सीमा भी पार कर जावा हाँ, तो एक सीमा तय कर लिया कि आपने दिन भर के मायने कम से कम कितनी बार चाय पीनी है। कोशिश करा कि कम से कम हुए, या फिर अपनो जो इकट्ठे आनो जानो हुए है अपने पारिवारिक रिश्तेदारा के सागे या फिर अपना कोई पारिवारिक रिश्तेदार आता हुए तो बाकी हिसाब से आप एक समय सीमा तय कर लिया कि रिश्तेदार के आने के बाद में चाय बनेगी और बाकी साथ ही पी जाएगी। अगर बीती देर तक अपने सब्र ना हुए तो एक काम आप और कर सका हाँ कि चाय की जो सीमा है यानी आप दिन में 2 या 3 या चाय पीवा तो अगर 4 पीता हुआ तो 3 कर दें, 3 पीता हुआ तो 2 कर दें, और 2 पीता हुआ तो आप कोशिश करा कि 2 से भी कम करने की, या फिर 2 बार अगर चाय पी रहे हाँ तो कप भर के पी रहे हाँ तो एक तो आप कप की जो की मात्रा है वह कम कर सका हाँ, जितनी संख्या में दिन में पी रहा बस संख्या कम कर सका हाँ, दिन की शुरुआत आप मात्र एक चाय का सागे भी कर सका हाँ, और बात चाय है जो कि खाली चाय ना होके भी के साथ अगर कुछ खाने बिस्किट ले लिया या फिर कुछ दलियो वगैरह ले लिया तो वह कम नुकसान करे। दूसरी बात भी कि मात्रा कम कर दें यानी कि भरेड़ा कप है जगह आधा कर लें, या फिर जब आप चाय के मायने 1 चम्मच चाय पत्ती डालता हुआ तो वह 1 चम्मच से थोड़ी सी कम आप भी कमाई ने पत्ती है जिकी डाल दें। कॉफी की अगर आप 1 चम्मच से कॉफी बना रहे हाँ तो भी की जो कॉफी को पाउडर है भी की मात्रा है वह भी आप कम कर सका हाँ, कम से कम उबालने की कोशिश करा कि कम अगर उबालांगा तो वह कैफीन कम अंदर आवेगो और कम नुकसान करेगो। बहुत देर तक उबाल के रखा या फिर गैस पर चढ़ा के ही छोड़ दिया आधे घंटा तक वह उबलती ही जा रही है, एल की चाय अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हुए है बिसु आप बचने की कोशिश करा। पूरे दिन भर के मायने जब आप चाय पीवा तो 1 कप से आधा कप पर आवा और आधा कप से और कम तक आप आ सका हाँ। दूसरो चाय का जो को विकल्प है वे आप अपनावा, जैसे कि आप हर्बल चाय ले सका हाँ, नींबू की चाय ले सका हाँ, लेमन ग्रास टी ले सका हाँ, नींबू पानी पी सका हाँ, और या फिर आप पानी ही ज्यादा पी सका हाँ। तो जब भी अपने चाय की तलब हो तो दूसरा विकल्प ढूंढने की कोशिश करा, भी सूखे हुए गो अपनी चाय की आदत है वह धीरे धीरे कम होगी, और कुछ चीजों को ध्यान भी रख

की जरूरत है, जैसे कि भोजन करने के कम से कम 1 घंटे पहले और 1 घंटा पाछे चाय बिल्कुल नहीं पीवा, कॉफी बिल्कुल नहीं लेवा, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद टैनिन है वो भोजन में आयरन के अवशोषण में बाधा पहुंचावे है, और पूरी तरह से अगर आपने भोजन में लोह तत्व को अवशोषण ना होगा तो एनीमिया की शिकायत हो सके है। अगर आप चाय या कॉफी ने छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़े दिन तो परेशानी होगी, जहाँ 4-5 दिन तो अपने बाद चाय और कॉफी की तलब है जो कि हरारत करेगी, परेशान करेगी, पर धीरे धीरे ही सही पर आदत छूट जाओगी। 1-2 दिन अपने अंदर घबराहट हो सके है, चाय की तलब महसूस हो सके है, सिर में दर्द हो सके है, तो अपना पर्याप्त रूप से पानी पी सका, आराम कर सका, विकल्प ढूंढ सका, जैसे कि जूस पी लियो या फिर नींबू पानी पी लियो, तो भी सूखे हुए को के थोड़ी थोड़ी तलब लगेगी, लेकिन अगर बिना अपा दूसरा तरीका से दिमाग से निकालने की कोशिश करांगा तो धीरे धीरे वह आदत भी छूट जाओगी। और अगर पूरी तरह से आपा ना छोड़ पाओ तो बिना कम जरूर कर सका। तो बहनों चाय और कॉफी हर कोई की पसंदीदा चीज होवे हैं। चाय बरसात के मौसम का मायने बहुत चोखी लागे है, सर्दिया में बहुत अच्छी लागे है, पर एक अच्छो लागणो और स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाना दोनों अलग अलग चीज है। बात अगर आपा स्वास्थ्य की करांगा तो थोड़ा सो आपने सजग होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, और धीरे धीरे ही सही चाय की तलब कम करने की जरूरत है।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: बेड़ो अपने सावधान रहने की बहुत जरूरत है, सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। अपा जद भी ऑनलाइन शॉपिंग करा, जद भी अपा कोई चीज मंगवावा, जद भी अपा मोबाइल फोन से लेन देन करा, अपने जागरूक रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत को नहीं है, क्योंकि सतर्कता के साथ अपा हर मुश्किल को सामनो है जो को कर सका। हाँ, और बेड़ो अपा कोई भी प्रकार को स्कैम हो तो अगर आपने सागे हुआ है तो शर्माणो या डरनो या फिर संकोच करने की जरूरत को नहीं है, वह तुरंत भी की शिकायत करने की जरूरत हो है। साइबर जिका थाना है वहाँ कमाई ने आपा ये चीज़ की रिपोर्ट है कर सका। हाँ, और बहनों अपने स्वास्थ्य को अपने विशेष ध्यान रखना है, चाय कॉफी को सेवन कम से कम करना है, जैसे कि है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रह के और अच्छी तरह अपने स्वास्थ्य को ध्यान रख सका। जब आप खुद स्वस्थ रहेंगा तो ही अपने परिवार को आप ध्यान रख पाऊंगा। और स्वास्थ्य की ही बात करा फेड़ो तो खान पान को अपने विशेष ध्यान रखना है, शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक अपने आहार लेना है, क्योंकि पोषण अगर शरीर ने नहीं मिलेगो तो कई प्रकार का विकार तो अपन यही घेर लेगा। ये वास्ते अपनो स्वास्थ्य अपनो धन है, और स्वास्थ्य ही कह रहे के पहलो सुख निरोगी काया। अगर अपन सुखी रहना है तो अपनो स्वास्थ्य है, बिना अपने निरोगी रखने की महती आवश्यकता है। स्वास्थ्य निरोगी कद होएगो जब आप स्वस्थ आदतें अपनावेंगा, और स्वस्थ आदतें कमाई नहीं है कि सवेरे जल्दी उठनो है, शाम ने अपन टेम पर सोनो है, वक्त पर खानो है, और व्यायाम करनो है, घूमनो फिरनो है, और रात के खानो खाया पछे अपन थोड़ी देर टहलनो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप टहलांगा तो अपनो शरीर है जो को स्वस्थ रहेगो, खाएड़ो अपनो पचेगो, और जब अपने भोजन पाचन क्रिया

भोजन के खाने में करिया पाछे जो अपनी पाचन क्रिया है वह अगर सुचारू रूप से चलती रहेगी तो आपा स्वस्थ रहवांगा, निरोगी रहवांगा और खायो पियो है जो को आपा ने लागेगो भी। तो बहनों आज को ओ कार्यक्रम है इको टेम है जो को पूरो होने में है। फेरो मिलन तानी अबार के लिए विनोद ने देव सीख। राम राम।

ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से पहले मिडडे न्यूज, फिर 2:15 पर दोपहर समाचार रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: service to humanity. Doctors are the cornerstone of our healthcare system, tirelessly working to alleviate suffering, save lives, and uphold the highest standards of patient care. Your selfless commitment and resilience continue to inspire the nation and strengthen our collective pursuit.
1: In FIFA World Cup, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium this morning to qualify for the round of 16. Raul Jimenez and Julian Quiles scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dhiraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है।

डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के

0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए

0: सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश

0: बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले दो दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अरमान मलिक को। फिल्म का नाम है दो लफ्जों की कहानी।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश। आपके

0: ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुनिए, फिल्म का नाम है दो कलियां।

0: 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: दोस्ताना फिल्म का गीत सुनिए, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

बागी फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की पहली सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 4:58 पर दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। अब आज की हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हम सुनेंगे हमारे युवा दोस्तों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

जी दोस्तों, इस गाने के साथ हो चुकी है कार्यक्रम युववाणी की शुरुआत। और आज के इस युववाणी में मैं हूं आपकी साथी दोस्त डिंपल शर्मा। प्रोग्राम सुन रहे तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

जी दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है बुधवार और बुधवार को होता है हमारा खास सेगमेंट विज्ञान धारा। और दोस्तों, अगर हम विज्ञान की बात करें और तकनीक की नई दुनिया की बात करें, तो आज विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट पर हमारी हर क्लिक, हर सर्च, हर लाइक, हर फोटो और हर टिप्पणी एक ऐसी पहचान बनाती है जो हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, और इसी पहचान को हम डिजिटल फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। जैसे हमारी उंगलियों के निशान प्रत्येक व्यक्ति की अलग पहचान होते हैं, ठीक वैसे ही इंटरनेट पर हमारी ऑनलाइन जो गतिविधियां हैं वो हमारी एक अनोखी डिजिटल पहचान बनाती है। ये पहचान जो है वो केवल हमारे दोस्तों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वेबसाइटों, कंपनियों और सर्च इंजन और कई बार ऑनलाइन जो सेवाएं हैं वहां तक भी पहुंच सकती है। विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में डेटा साइंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और जो बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकी हैं वो हमारे डिजिटल फिंगरप्रिंट का विश्लेषण करती है। और इन्हीं तकनीकों की मदद से हमें हमारी पसंद के विज्ञापन दिखाई देते हैं, हमारी रुचियों के अनुसार जो है वो सुझाव मिलते हैं और ऑनलाइन सेवाएं अधिक जो व्यक्तिगत है वो बनाती हैं। लेकिन यदि हम सावधान न रहें तो ये डिजिटल फिंगरप्रिंट जो है वो हमारी निजता और साइबर सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन सकता है। इसलिए आज के समय में केवल डिजिटल तकनीक का उपयोग करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये समझना भी ज़रूरी है कि इंटरनेट पर जो भी हमारी पहचान बन रही है वो कैसे बन रही है, उसे हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं और विज्ञान किस प्रकार हमारी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित और स्मार्ट बना रहा है। तो आज का जो खास सेगमेंट है उसमें हम जानेंगे दोस्तों कि डिजिटल फिंगरप्रिंट इंटरनेट पर आपकी पहचान जो है वो किस तरीके से बनाता है और किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों, चाहे आप छात्र हो, शिक्षक हो, किसान, व्यापारी, गृहिणी या नौकरी पेशा व्यक्ति हो, यदि आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपका भी एक डिजिटल फिंगरप्रिंट है। और डिजिटल फिंगरप्रिंट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान के बारे में कि विज्ञान ने जो मानव जीवन को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, कभी संदेश भेजने में कई दिन लगते थे लेकिन आज जो है वो एक सेकंड में

दुनिया के किसी भी कोने में बात हो जाती है। शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, खरीदारी, मनोरंजन और सरकारी जो सेवाएं हैं वो सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हैं। लेकिन इस सुविधा के साथ एक जो नई जिम्मेदारी है वो भी जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, किसी ऐप का उपयोग करते हैं या ऑनलाइन जो खरीदारी है वो करते हैं, तब आपकी हर गतिविधि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही होती है। यही रिकॉर्ड जो है वो आपकी डिजिटल पहचान यानी कि डिजिटल फिंगरप्रिंट कहलाता है। जिस प्रकार हमारी उंगलियों के निशान, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि हर व्यक्ति से अलग होता है, उसी प्रकार इंटरनेट पर हमारी गतिविधियां भी अलग अलग होती है। आज डेटा को नया ईंधन कहा जाता है। जिस प्रकार मशीनें ईंधन से चलती है, उसी प्रकार आधुनिक डिजिटल सेवाएं जो हैं वो डेटा से चलती हैं। आपकी पसंद, आपकी रुचियां, आपकी खोज, आपका स्थान और आपकी ऑनलाइन आदतें, ये सभी मिलकर आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट जो है वो तैयार करती है। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि डिजिटल फिंगरप्रिंट बनता कैसे है? तो इसकी अगर हम बात करें तो जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपका ब्राउजर जो है वो कुछ जानकारी साझा करता है। जब आप कोई सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करते हैं तो और कोई वीडियो पसंद करते हैं या किसी पोस्ट पर आप टिप्पणी करते हैं या ऑनलाइन भुगतान करते हैं, तब आपकी गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो बन जाता है। विज्ञान की उन्नत शाखाएं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड जो कंप्यूटिंग है, इसी डेटा का उपयोग करती है। AI ये समझने की कोशिश करता है कि आपको किस प्रकार की जानकारी पसंद है। मशीन लर्निंग आपके व्यवहार से सीखती है। डेटा साइंस जो है वो लाखों करोड़ों लोगों के डेटा का विश्लेषण करती है। साइबर सुरक्षा इस डेटा को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। और यही कारण है कि यदि आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग या वेबसाइट पर कुछ भी सामान खरीदते हैं तो कुछ ही देर बाद में दूसरी वेबसाइटों या सोशल मीडिया पर आपको भी वैसे ही जो विज्ञापन जो आपने पहले खोजे हैं वो आपको दिखाई देने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है बल्कि विज्ञान और डेटा विश्लेषण का ही परिणाम है। दोस्तों, डिजिटल फिंगरप्रिंट भी दो प्रकार का होता है। एक वह जो हम स्वयं बनाते हैं, जैसे पोस्ट करना, फोटो डालना, टिप्पणी करना और जानकारी साझा करना, और दूसरा वो जो हमारी जानकारी के बिना बनता है, जैसे वेबसाइटों द्वारा हमारी ब्राउजिंग गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। और यहीं से जो डिजिटल सुरक्षा है उसका महत्व भी शुरू हो जाता है। यदि हम बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी इंटरनेट पर साझा करते हैं, कमजोर पासवर्ड रखते हैं या किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं, तो साइबर अपराधी जो है इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। इसलिए विज्ञान जो है हमें केवल नई तकनीक ही नहीं देता है दोस्तों, बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से उपयोग करने की सीख भी देता है। एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने के लिए हमें मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए। दो स्तरीय सुरक्षा यानी कि टू फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन होता है उसका उपयोग करना चाहिए। केवल विश्वसनीय वेबसाइटों पर ही अपनी जानकारी साझा करनी चाहिए और समय समय पर अपनी गोपनीयता सेटिंग्स जो है उसकी जांच करते रहना चाहिए। दोस्तों, इंटरनेट एक शक्तिशाली साधन है और इसका उपयोग हमें ज्ञान, अवसर और विकास देता है, जबकि लापरवाही जो है वो हमें साइबर अपराधों का शिकार बना सकती है। इसलिए याद रखिए, आपकी डिजिटल पहचान आपकी वास्तविक पहचान जितनी ही महत्वपूर्ण है। और विज्ञान और तकनीक का उपयोग जो है दोस्तों, समझदारी, जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ करें, ताकि डिजिटल भारत का भविष्य और भी सुरक्षित, सशक्त और जागरूक बन सके। जी दोस्तों, खास सेगमेंट में बातें भी यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल लिए चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

जी दोस्तों, आज 1 जुलाई 2026 है और ये जो पूरा प्रोग्राम है आज का हमारा, वो आज की तारीख और इस हफ्ते के जो विशेष महत्व है उसको समेटे हुए है। जी बिल्कुल दोस्तों, आज जो है 1 जुलाई 2026 यानी कि आज का जो दिन है वो इतिहास, प्रकृति, चिकित्सा और साहित्य के दृष्टिकोण से बेहद अनोखा संगम लेकर आया है। अगले जो भी समय है, अगले समय में हम बात करेंगे आपसे, मिलकर सफ़र करेंगे कुछ बेहद खास शख्सियतों की यादों का और साथ ही आगाज़ करेंगे एक ऐसे महोत्सव का जो हमारी धरती को सांसें देता है। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है कई खास विषय, जैसे कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती, महान शायर मोमिन पुरुषोत्तम दास टंडन जी की स्मृति और आज से ही शुरू हो रहा है वन महोत्सव सप्ताह। तो दिल थाम कर बैठिए

लेकर आज 2026 की आधुनिक चिकित्सा तक इन सफेद कोट वाले योद्धाओं ने हमेशा ये साबित किया है कि निस्वार्थ सेवा जो है वो क्या होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की कहानी है कि भारत के एक महान रत्न जो कि डॉक्टर विधान चंद्र राय हैं, उनकी कहानी जुड़ी हुई है। आज उनकी जयंती भी है और पुण्यतिथि भी। जी दोस्तों, 1 जुलाई 1882 को वो जन्मे और 1 जुलाई 1962 को ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। डॉक्टर राय सिर्फ एक बेहतरीन डॉक्टर नहीं थे, वो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने चिकित्सा जगत और समाज सेवा को जो दिशा दी, उसके लिए उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। आज का दिन जो है वो देश के हर उस डॉक्टर को सलाम करने का है जो अपनी रातों की नींद खोकर हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। आप सभी डॉक्टरों को आकाशवाणी परिवार की तरफ से सलाम और शुक्रिया, क्योंकि आप जो हैं, आपकी वजह से ही न जाने कितनी जो जानें हैं वो सुरक्षित रहते हैं। चिकित्सक जो है वो केवल बीमारियों का इलाज नहीं करता दोस्तों, बल्कि मरीजों को नया जीवन, नई आशा और नया विश्वास भी देते हैं। दिन हो, रात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, महामारी हो या प्राकृतिक आपदाएं हो, डॉक्टर हमेशा जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। और हाल के वर्षों में हमने देखा भी है कि कठिन परिस्थितियों में भी डॉक्टर जो है उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही लोगों की सेवा की। उनका समर्पण हमें ये सिखाता है कि सेवा, करुणा और मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का उद्देश्य भी केवल डॉक्टरों का सम्मान करना नहीं है, बल्कि समाज को ये संदेश देना है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए और डॉक्टरों के परामर्श का पालन करना चाहिए। और इस अवसर पर हम सभी अपने देश के प्रत्येक डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करें। उनके अथक प्रयासों के कारण ही हमारा समाज जो है अधिक स्वस्थ और सुरक्षित बना है, और उन्हीं की वजह से आज जो हैं वो हम ऐसी बीमारियों से भी जो है उनका निदान पा चुके हैं, जो हमें कई बार लगता था कि उनसे हम नहीं छुटकारा पा सकेंगे। तो डॉक्टर जो है उनसे बात करने से ही आधे से ज़्यादा बीमारियां जो है वो हमारी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो इनका बहुत बड़ा महत्व जो है वो हमारे लिए रहा है। अब दोस्तों, डॉक्टरों की बात के बाद चलिए रुख लेते हैं अदब और शायरी की महफिल की तरफ। आज चर्चा में हमारे साथ शामिल है उर्दू शायरी के वो चमकते सितारे, उनको हम याद करेंगे जिन्हें गालिब और जोक के दौर का सबसे हसीन शायर जो है वो माना गया। नाम था मोमिन का, मोमिन। मोमिन की शायरी का अंदाज जो है वो इतना जुदा था कि खुद मिर्जा गालिब ने उनके एक शेर के बदले अपना पूरा दीवान जो है वो देने की बात कह दी थी। और वो मशहूर शेर जो था वो था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन पेशे से हकीम यानी कि डॉक्टर भी थे, ज्योतिषी भी थे और शतरंज के माहिर खिलाड़ी भी। उनकी शायरी में वो नजाकत थी जो इश्क का संजीदा रंग था, वो आज भी हमारे दिलों को छूता है। आज उनके इस योगदान को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं और उनको याद करते हैं कि उन्होंने बहुत जो अच्छी गज़लें, शायरियाँ वो है वो हमें दी। जी दोस्तों, खास सेगमेंट में आगे और भी बातें करेंगे, फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
8: जी दोस्तों, म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोमिन खान के बारे में। यदि उनकी शायरी की बात करें तो उनका सबसे प्रिय जो विषय था वो प्रेम था। उनकी गजलों में प्रेम की कोमल भावनाएं, बिछड़ने का दर्द, मिलन की चाह और इंसानी रिश्तों की बारीकियां बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त होती हैं। उनकी भाषा सरल होने के साथ साथ जो अत्यंत प्रभावशाली है वो भी है, और यही कारण है कि उनकी गजलें जो है आज भी उतनी ही पसंद

की जाती है जितनी उनके समय में होती थी। मोमिन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि कम शब्दों में गहरी बात कहने की वो कला जो है वो जानते थे। उनकी शायरी सीधे दिल को छूती है और पाठक या जो श्रोता है उनको भावनाओं से जोड़ देती है। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में दीवाने मोमिन का जो विशेष स्थान है वो है, इसके अंदर उनकी अनेक जो गज़लें हैं वो संकलित हैं जिन्हें उर्दू साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि मोमिन खां के बारे में एक प्रसिद्ध साहित्यिक प्रसंग भी सुनने को मिलता है कि जो एक गज़ल है मिर्ज़ा गालिब ने बहुत प्रशंसा जो है उसकी की थी। और साथ ही साथ हम बात करें दोस्तों मोमिन की रचनाओं के बारे में, तो मोमिन की जो रचनाएं हैं वो हमें सिखाती है कि सच्ची कविता केवल शब्दों का खेल नहीं होती बल्कि वह दिल की गहराइयों से निकली हुई अनुभूति होती है। वर्ष 1852 में उनका निधन जो है वो हो गया लेकिन उनकी शायरी आज भी जीवित है। मुशायरों, साहित्यिक कार्यक्रमों और उर्दू अध्ययन में उनका नाम जो है वो अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। आज भी जब उर्दू गज़ल की चर्चा होती है तो मोमिन का नाम जो है वो बड़े आदर से लिया जाता है। उनकी रचनाएं नई पीढ़ी को भाषा की सुंदरता, प्रेम की पवित्रता और अभिव्यक्ति की गरिमा का संदेश देती है। हम इस महान शायर को श्रद्धापूर्वक नमन करें आज के दिन और उनका साहित्य है उनको पढ़ने तथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी जो काम है वो हम कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ अगर हम बात करें आज के खास सेगमेंट के बारे में, तो आज जो है और आज के खास दिन के बारे में आज बहुत सी जो खास बातें हैं, जैसे कि आज डॉक्टर वीसी राय की जयंती और पुण्यतिथि भी है, साथ ही साथ नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो आज ही के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों साहित्य और चिकित्सा के बाद अगर हम बात करें तो भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुष की जिन्हें देश जो है वो राजश्री के नाम से जानता है। जी दोस्तों हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी की। आज के ही दिन 1 जुलाई 1962 को इन्होंने इस नश्वर संसार को त्यागा था। टंडन जी का जो भी भारत की राष्ट्रभाषा है वो हिंदी को आधिकारिक दर्जा दिलाने में सबसे बड़ा योगदान है वो रहा था। इन्होंने हिंदी को जन-जन की भाषा बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वो लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। अत्यंत सादगी पसंद और ऊंचे विचारों के धनी टंडन जी को देश ने भारत रत्न देकर सम्मानित किया और आज उनकी पुण्यतिथि पर देश जो है वो उन्हें नमन कर रहा है। उनकी सादगी हम सबके लिए दोस्तों एक सीख है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से आप सादगी के साथ भी अपना जीवन जो है वो इतना अच्छा गुजार सकते हैं। और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान जो है वो भी हमारे लिए दिया है और हमारी जो भाषा है राष्ट्रभाषा उसको भी आधिकारिक दर्जा दिलाने में इनका बहुत योगदान रहा है। जी दोस्तों यानी कि आज का दिन जो है वो बहुत खास है, लेकिन साथ ही साथ आज की अगर हम सप्ताह के बारे में बात करें कि आज से जो दिन शुरू हो रहा है 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, 7 जुलाई तक एक खास सप्ताह है जो मनाया जा रहा है। और वो कैसा सप्ताह, खास क्यों है, क्या कारण है और किस रूप में हम उसे मनाने जा रहे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

जी दोस्तों, अब बात करते हैं उस उत्सव की जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा है। जी दोस्तों, आज 1 जुलाई 2026 से 7 जुलाई 2026 तक पूरे देश में वन महोत्सव सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत साल 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल जो मुंशी है उन्होंने की थी। और वन महोत्सव सिर्फ जो पेड़ लगाने का सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये धरती के प्रति हमारी कृतज्ञता का पर्व है। आज साल 2026 में जब हम ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और बदलते मौसम का सामना कर रहे हैं, तब इस महोत्सव में प्रासंगिकता 1000 गुना जो है वो बढ़ जाती है। पेड़ सिर्फ लकड़ी या फल नहीं देते हैं, वो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं, जो इस जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। इस एक हफ्ते में देश भर में करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे। और आप सभी श्रोताओं से ये अपील है कि आप सिर्फ पौधा ना लगाएं, बल्कि उसका पूरा ख्याल रखें। जिस तरीके से आप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरीके से आप एक पेड़ लगाएं और उसे भी एक बच्चे की तरह पालकर जो है पौधे को बड़ा पेड़ बनाएं। और ये जो वन महोत्सव है, इस महोत्सव में आप सभी हमारे साथ मिलकर एक संकल्प लें कि एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ भविष्य के नाम। अपने आंगन में, सड़क किनारे या पार्कों में एक पौधा जो है वो आप जरूर लगाइए, क्योंकि दोस्तों जरूरी है पौधे लगाने। और वन महोत्सव जो है इस दौरान, ये वन महोत्सव सप्ताह के दौरान देश भर में विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों द्वारा वृक्षारोपण अभियान जो है वो चलाए जाते हैं। लोग अपने घरों, खेतों, पार्कों, सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर भी पौधे लगाते हैं। साथ ही पर्यावरण रैलियां, चित्रकला प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इनका सभी का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लोग जो है प्रकृति संरक्षण के लिए इनके साथ जुड़ सकें। अब दोस्तों, वन महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है, उसके बारे में हम बात करें कि ये केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी नियमित देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है वो पौधे लगाने के नाम पर ढेरों पौधे लगा देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भूल जाते हैं, उनकी देखरेख नहीं करते, उनका ध्यान हम जो है वो हम नहीं रखते हैं। यदि लगाए गए पौधों को पानी, सुरक्षा और उचित देखभाल मिलेगी

तभी वे बड़े होकर वृक्ष बनेंगे और समाज को लाभ पहुंचाएंगे। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें जो हैं वो भी इस सप्ताह के दौरान बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाती है। कई स्थानों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नीम, पीपल, बरगद, शीशम, अर्जुन, अमलतास, करंज, जामुन, आम और अन्य देशी प्रजातियों के पौधे जो हैं वो लगाए जाते हैं, क्योंकि ये स्थानीय जलवायु में बेहतर विकसित होते हैं। आज बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और जंगलों की कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, वर्षा का जो स्वरूप है वो बदल रहा है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में वन महोत्सव हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। हम सभी इस सप्ताह एक संकल्प ले दोस्तों कि हर वर्ष कम से कम एक पौधा जो है वो अवश्य लगाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे, जल और ऊर्जा की बचत है वो करेंगे और दूसरों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। यदि देश का प्रत्येक नागरिक एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनाने तक की जिम्मेदारी है वो लेता है और सुरक्षित रखता है उसे, तो भारत का हरित क्षेत्र जो है वो तेजी से बढ़ सकता है। और यही कहा जा सकता है दोस्तों अंत में कि वन महोत्सव सप्ताह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। पेड़ पृथ्वी का श्रृंगार है, जीवन का आधार है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे अनमोल उपहार है। तो आइए इस वन महोत्सव सप्ताह पर हम सब मिलकर अधिक से अधिक पौधे लगाएं, उनकी रक्षा करें और एक स्वच्छ हरित तथा स्वच्छ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। यही वन महोत्सव का सच्चा उद्देश्य और सबसे बड़ा संदेश है। और दोस्तों ज़रूरी भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी इस तरीके के जो अभियान हैं वो चलाए जाते हैं या ऐसी बातें जब की जाती है तो उस वक्त जो हमारे अंदर जोश और जुनून जो है वो एकदम भर जाता है और हम जो है वो करते भी हैं। जैसा कि ये सब बातें सुनकर बहुत से श्रोताओं के मन में पौधे लगाने का जो विचार है वो आया होगा, लेकिन ज़रूरी है कि सिर्फ ये विचार जो है इसे आप आगे भी बढ़ाएं। पौधा लगाने के साथ साथ उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी सुरक्षा करेंगे तभी आप सोचिए दोस्तों कि आप कितने लोगों को, अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो आप कितने लोगों को आश्रय देते हैं। क्योंकि एक पौधा जो है ना सिर्फ धूप से परेशान राहगीरों को छाया देता है बल्कि कितने जो पक्षी हैं वो उस पर अपना घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आप इतने सारे लोगों का एक साथ भला करना चाहते हैं या ऐसा सोचते हैं, ऐसी सोच आप रखते हैं, तो ज़रूरी है आपको एक पौधा लगाना। एक पौधा लगाकर आप कितने जो अच्छे काम हैं एक साथ कर रहे होते हैं वो आपको नहीं पता होता है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन जो है वो हमें मिलती है। और बारिश ना होने की वजह से हम काफ़ी परेशान रहते हैं कि गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, बारिश नहीं हो रही, तो इसके पीछे का कारण भी यही है कि लगातार वनों की जो कटाई है वो हो रही है। तो जिस गति से वनों की कटाई हो रही है उसी गति के साथ पौधे जो हैं वो बढ़ तो नहीं सकते, लेकिन हम पौधे लगा सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब चारों तरफ जो है वो हमें हरियाली देखने को मिलेगी, ढेरों जो पेड़ हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आप एक कदम उठाएं। और सबसे जो खास बात यही है कि इस कदम को उठाने के लिए सबसे अच्छा दिन है वो आज से ही शुरू हो रहा है। वन महोत्सव की शुरुआत जो है वो आज से हो रही है। तो आज जो है एक पौधा अपने हाथ से लगाएं और उसे सुरक्षित रखने का संकल्प जो है वो आप लें। जी दोस्तों बातें यूं ही जारी रहेगी, फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: जी दोस्तों, वन महोत्सव जो है उसके बारे में हम बात करें और पेड़ों के बारे में बात करें, तो कुछ खास बातें जो हैं वो हम आपके साथ साझा करते हैं। कि जैसे कि हम जो है हमारी मन की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसी तरीके से क्या पेड़ जो है वो भी बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कई पेड़ जो हैं वो अपनी जड़ों और मिट्टी में मौजूद जो कि माइकोराइजा होती है, उसके नेटवर्क के माध्यम से पोषक तत्व और रासायनिक संकेतों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसे कभी कभी वुड वाइड वेब जो है वो भी कहा जाता है। पेड़ भी मौसम को प्रभावित करते हैं। ये जो सवाल है कि क्या पेड़ की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, बारिश किस तरीके से होती है, तो पेड़ जो है वो अपनी पत्तियों से जलवाष्प छोड़ते हैं जिससे कि वातावरण में नमी बढ़ती है और स्थानीय तापमान जो है वो कम करने में मदद मिलती है। एक बड़ा पेड़ प्राकृतिक एयर कंडीशनर जैसा होता है, उसकी छाया और वाष्पोत्सर्जन जो है वो आसपास के क्षेत्र को ठंडा रखने में योगदान देते हैं। जंगल पृथ्वी के सबसे बड़े कार्बन बैंक है। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे अपने तने, शाखाओं और जड़ों में वर्षों तक संचित रखते हैं, जिससे कि जलवायु परिवर्तन की गति जो है वो कम करने में मदद जो है वो मिलती है। और एक पेड़ जो है एक छोटा सा पारिस्थितिक तंत्र है, जो कि एक परिपक्व पेड़ पर पक्षी, कीट, तितलियां,

मधुमक्खियाँ, काई और अनेक सूक्ष्म जीव जो है वो अपना जीवन बिताते हैं। पेड़ और पानी की अगर हम बात करें तो इनका काफ़ी गहरा जो संबंध है दोस्तों वो होता है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त पेड़ होते हैं वहाँ मिट्टी वर्षा का पानी अधिक देर तक रोक पाती है, जिससे कि भूजल पुनर्भरण में काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही साथ पेड़ भी याद रखते हैं। कुछ पौधों में ऐसी जैविक प्रक्रियाएं होती है दोस्तों जिनसे वे पिछले पर्यावरणीय तनाव जैसे कि सूखा या ठंड के प्रति अगली बार बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसे वैज्ञानिक प्लांट मेमोरी या स्ट्रेस जो मेमोरी है वो कहते हैं। जिस तरीके से हम भी हमारे साथ जो पहले घटनाएं हुई रहती है या यूं कहें कि पहले जो मुश्किलें आती हैं उनके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं दोस्तों, उसी तरीके से पेड़ जो हैं वो भी ये काम करते हैं। साथ ही साथ पेड़ जो हैं वो एक जीवित प्रयोगशाला है। एक पेड़ में लाखों कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है। हर नई पत्ती, फूल और शाखा जो है कोशिका विभाजन और वृद्धि का परिणाम होती है। मधुमक्खियों का भविष्य भी पेड़ों से जुड़ा होता है। फूलों वाले पेड़ मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जो कीट हैं उनको भोजन देते हैं, और इनके बिना कई फलों और सब्जियों का उत्पादन प्रभावित भी हो सकता है। तो साथ ही साथ जंगल पृथ्वी के तापमान को भी संतुलित रखते हैं। घने वन सूर्य की ऊर्जा का एक हिस्सा जो है वो अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से आसपास के वातावरण को ठंडा रखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पेड़ों की जड़ें जो है वो मिट्टी में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं और कई जो अशुद्धियां हैं उनको रोकने में मदद करती हैं, जिससे कि भूजल की गुणवत्ता जो है वो और भी बेहतर हो जाती है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों हर पेड़ जो है वो उसका एक अपना बायोम होता है। एक बड़े पेड़ पर सैकड़ों प्रकार के कीट, पक्षी, कवक, काई और सूक्ष्म जीव रहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। यानी कि एक पेड़ जो है वो अपने आप में एक छोटा सा जीवित संसार है। साथ ही साथ पेड़ जो है वो शोर भी कम करते हैं। घने पेड़ों की पंक्तियां ध्वनि तरंगों को आंशिक रूप से अवशोषित और बिखेर सकती है, इसलिए शहरों में ग्रीन बेल्ट शोर जो है वो कम करने में भी ये सहायक होता है। साथ ही साथ शहरों में पेड़ क्यों ज़रूरी है इसकी अगर हम बात करें तो पेड़ सड़कों पर इमारतों का तापमान कम करने में मदद करते हैं, जिससे कि शहरों के आसपास के क्षेत्रों में अधिक गर्म होना या उसे जो गर्म होता है उसे कम किया जा सकता है। और दोस्तों जो है वन पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने वाली प्राकृतिक ढाल की तरह काम करते हैं। यदि बड़े पैमाने पर वन समाप्त हो जाएं तो जलवायु परिवर्तन की गति और तेज हो सकती है, यानी कि पृथ्वी की हरी ढाल की तरह ये काम करते हैं। पेड़ हवा की गुणवत्ता को और भी बेहतर बना देते हैं। पेड़ों की पत्तियां हवा में मौजूद धूल और कुछ प्रदूषक जो कण हैं उनको अपने ऊपर रोक सकती है, जिससे कि आसपास की वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ होती जाती है। साथ ही साथ वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि हरियाली वाले जो वातावरण है उसमें समय बिताने से तनाव कम हो सकता है, मन शांत रहता है और एकाग्रता जो है वो बेहतर हो सकती है। एक परिपक्व पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते हैं। काफ़ी जो पक्षी होते हैं उनका घर होता है, और वन, वर्षा, मिट्टी की नमी और परागण करने वाले जीवों को भी सहारा देकर कृषि को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करने बैठें तो हम पेड़ों के बारे में इतनी बातें कर सकते हैं या इतनी उनसे जुड़ी जो हमारे लिए लाभकारी जानकारियाँ हैं वो हम जान सकते हैं। यानी कि पेड़ जो है वो स्वयं के लिए कुछ नहीं करते, जो भी काम वो करते हैं वो हम सब के लिए करते हैं। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जब आप एक पौधा लगाते हैं तो केवल मिट्टी के एक बीज नहीं बोते, बल्कि विज्ञान, पर्यावरण, जल, जलवायु और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं, और यही है वन महोत्सव का वास्तविक संदेश। जी दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और फिलहाल कार्यक्रम से जाने की इजाजत दें आपकी दोस्त डिंपल शर्मा को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 5:55 हो चुके हैं। आइए सुने कार्यक्रम विवरण में आज की सायकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से थोड़ी देर में यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे शाम 6:05 पर। ये समाचार प्रसारण श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। शाम 6:10 पर सुनिए देशभक्ति फिल्मी गीत।

संस्कृत में ये समाचार श्रोता सुनेंगे शाम 6:20 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। 6:30 का समय रहेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर। 6:45 पर सुनिए राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी केंद्र जयपुर अजमेर से रिले करेंगे।

शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम खेती और गृहस्थी का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चाएं, लोकगीत एवं लोक भजन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता श्रोता सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे।

रात्रि 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या। न्यूज एट 9 का प्रसारण होगा रात्रि 9 बजे। ये समाचार अंक श्रोता सुनेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम चर्चा का विषय है, श्रोता सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: रात्रि 10 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का, सुगम संगीत का कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे रात्रि 10:23 पर। सभा के आखिर में आप सुनेंगे रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि 11:05 पर। ये समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से

0: कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
0: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The government today approved the construction of a 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has also approved the construction of the 117.7-kilometre Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
0: Aaj cabinet mein do bade faisle

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति फिल्म गीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म वीर जारा से, आवाजें लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की।

ए.आर. रहमान को श्रोता सुन रहे थे स्वदेश फिल्म में। इस गीत के साथ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: केरलप्रदेशे समीक्षां विधाय केन्द्रीयमन्त्रिणौ चौहान रिजिजू इत्येतौ असमराज्यस्यापि जलाप्लावेन ग्रस्तक्षेत्राणां निरीक्षणाय प्रस्थितवन्तौ। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनियुक्तः सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठ इत्येषः वर्धमान सुरक्षा वातावरणस्य समाह्वानानां निवारणाय सेनायाः आधुनिकीकरणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान्। एकत्रिंशत्तम सेनाध्यक्षत्वेन कार्यभारं स्वीकृत्य अद्य प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् जनरल सेठः अधोरेखितवान् यत् भारतीयसेनायाः उद्देश्यं प्रविधीयुतस्य भविष्यस्य कृते सज्जीभूतस्य सेनायाः निर्माणमस्ति। सहैव यश्च प्रत्येकस्मिन् विषये सशक्तं बहुविधक्षेत्रेषु कार्यं कर्तुं च समर्थं भवेत्।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारिकादूतमार्गं संयोजयन् दिल्लीनगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षड्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय अद्य सर्वकारेण अनुमतिः प्रदत्ता। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.1 किलोमीटर सुदीर्घस्य कानपुर कवराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगम नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति, यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: भारतीय ऋतु विभाग अवदत् यत् आगामि दिनेषु दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृट कालः अग्रे गमिष्यति। आगामि दिनद्वयोः उत्तरप्रदेशे बिहारे उत्तराखण्डे ओडिशा प्रदेशे विदर्भ क्षेत्रे च प्रचण्डतः अतिवृष्टेः ऋतु विभागेन नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देशः अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 पराजित्य 16 चरणे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा। और राज्य में मॉनसून के आगमन का काउंटडाउन शुरू, पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव का सशक्त माध्यम बनी है।

0: तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल खत्म हुआ है। श्री शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डीबीटी से हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है। राजस्थान में तकनीक को जनकल्याण का माध्यम बनाया जा रहा है।
1: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से एआई का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री शर्मा ने बताया कि राज्य को डेटा सेंटर क्षेत्र में 43,000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें एसटीटी, जीडीसी, एचजी एकाया, नायो बोल्ट सहित कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश के आईटी और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज तकनीकी नवाचारों से न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन की बात सार्थक हो रही है।
2: हर सेक्टर के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है और इसीलिए जो जनधन आधार और मोबाइल को जोड़ा गया उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर लीकेजेस खत्म हो गए। आज यूपीआई जो पहले मजाक बनाया जाता था आज यूपीआई गांव-गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं उसे हम राजस्थान में करें या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें। इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा, भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा।
0: राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से किया जा रहा है। सम्मेलन में कल विभिन्न प्लेनरी और ब्रेकआउट सत्र होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ समारोह का समापन होगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने राजधानी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। बैठक के फैसलों की मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग को स्वीकृति दी गई है। इससे पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच संपर्क बेहतर होगा। इस पर 6,970 करोड़ रूपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।
3: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। श्री मोदी बालोतरा के पचपदरा स्थित देश की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दौरे को यादगार बनाने और हरित विकास की अलख जगाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है।
4: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहत स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज लोक मंथन 2026 के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

0: है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शिरकत कर रहे हैं। हम भारत के लोग थीम पर इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन इस साल दिसंबर महीने में होगा। ये आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय चिंतन को समर्पित है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में समिति के साथ हुई बैठक में ये निर्देश दिए। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित समिति ने गृहमंत्री को बताया कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया जाएगा। साथ ही इस बारे में स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय होगा और विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। समिति ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रश्नावली तैयार की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल उच्च स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन की घोषणा की थी। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज खिलौना बैंक शुरू किए गए। साथ ही इन केंद्रों पर प्रवेशोत्सव और पौधरोपण के कार्यक्रम भी रखे गए। महिला और बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने जयपुर के गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को प्रवेश किट भी वितरित किए। उधर नंद घर योजना के तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाली के महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पवार ने बताया कि जिले के 222 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर में बदलने का काम पूरा हो चुका है।
1: जिले में 222 नंदघरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहता है, जिसमें और केंद्रों को भी नंदघर में चयनित किया जा सकेगा।
0: जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आज स्वायत्त शासन विभाग के सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच वार्ता हुई। इसमें यूनियन की कुछ मांगों पर सहमति बनी है। विभाग के सचिव रवि जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से कुछ मांगों पर सहमति के बावजूद सफाई संगठन अपनी अन्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में परंपरागत रूप से साफ सफाई का काम कर रहे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल के अंतर्गत होगी और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे। जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
0: सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जल्दी ही हड़ताल समाप्त करने के बारे में औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। राज्य में अगले 2 दिनों में मॉनसून के आगमन की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून राज्य के पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के सक्रिय होने से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 6 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर भागों में बरसात शुरू होने की उम्मीद है। इस बार मॉनसून की दस्तक करीब 8 दिन देरी से होने की संभावना है। हालांकि विभाग ने इस बार जुलाई महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच मॉनसून के प्रवेश से पहले प्री मॉनसून गतिविधियां कुछ भागों में सक्रिय है। बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बरसात हुई। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चली। भरतपुर में सुबह पानी बरसने के बाद दिन भर ठंडी हवाओं का दौर चला। राजधानी जयपुर में भी कुछ स्थानों पर आज छितराई हुई बारिश हुई। आज 24 जिलों में आंधी और बरसात की चेतावनी है। कल से 4 जुलाई के बीच बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज रफ्तार हवाएं और धूल भरी आंधी का अलर्ट बताया गया है। वहीं दूसरी ओर ज्यादातर हिस्सों में दिन भर तेज धूप और उमस का असर रहा। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बी सी राय की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति योगदान का सम्मान किया जाता है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सह आचार्य डॉक्टर अदिति

0: चिकित्सा पेशे को सेवा के साथ ही आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला बताया।
1: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूं। आप हमसे अस्पताल में सीधे न मिलते हों, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट आए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा और राज्य में मॉनसून के आगमन का काउंटडाउन शुरू, पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पहले दिन जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर पोलियो बूथ स्थापित किए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान हर पात्र बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। नगर परिषद क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में बिजली, पानी, सड़क, पट्टा वितरण, नाम परिवर्तन, आबादी, भूमि से जुड़े प्रकरणों सहित विभिन्न कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर देशल दान सहित प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं और आमजन की समस्याएं सुन रहे हैं। गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डैयाणा में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जिला सांख्यिकी विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांख्यिकी के महत्व और विकास योजनाओं के निर्माण में आंकड़ों की भूमिका पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की नीति निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। वनपाल भर्ती परीक्षा जिले में 34 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे और अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जाँच की गई। प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से परीक्षा के सफल संचालन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गईं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के किसानों को 23वीं किस्त जारी की गई। कृषि विज्ञान केंद्र फलोज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कृषि विभाग के अनुसार जिले के 1,53,000 से अधिक किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राशि जमा की गई। खातों में राशि पहुंचने पर किसानों ने खुशी व्यक्त की। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने किसानों से संवाद करते हुए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को भूमि की उर्वरता बनाए रखने, रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। आदिवासी अंचल की शिक्षा की प्रतीक शहीद वीर बाला कालीबाई का शहादत दिवस जिले भर में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। उनकी जन्मस्थली रास्तापाल सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और बलिदान को याद किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भी जिले भर में मनाई गई। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में महाराणा प्रताप के त्याग, साहस और स्वाभिमान को याद किया गया। वक्ताओं ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय समारोह डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान में हुआ।

0: कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों अधिकारियों और आम नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिला प्रशासन और सूचना तथा जनसंपर्क विभाग की ओर से विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया प्रदर्शनी में जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जिले में पिछले दिनों प्री मॉनसून की अच्छी बारिश हुई बारिश से तापमान में कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली हालांकि उमस का असर अभी भी बना हुआ है मौसम में बदलाव के बाद किसानों में भी उत्साह देखा जा रहा है किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुटने लगे हैं और अच्छी मॉनसूनी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं इसी के साथ डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई
1: नमस्कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ पेश है प्रादेशिक समाचार खास समाचार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारा ने बदलाव रो मजबूत जरियो बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा सारू तैयारियां जारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलाव रा बारा माए बनाई जी आला दर्जारी समिति उन सिफारिशां बेगी देवन सारू कहो और राज्य में चौमासा रे बिरखा बेगी सरूह बन रहा आसार उगनी हल्काओं बिरखा सरूह बन रही संभावना समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव रो मजबूत जरियो बनी है और तकनीक काम लेर सरकारी योजनावां में दलालान रो दखल खत्म भयो है श्री शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन रा उद्घाटन समारोह में बोल रहा है वे कहो कि डीबीटी उ हर योजना रो फायदो सीधो पात्र लोगों रा खाता में पोग रियो है
2: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 लागू की है इस नीति से एआई का उपयोग प्रशासन शिक्षा स्वास्थ्य कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है
1: मुख्यमंत्री ई मौके स्मार्ट परियोजना ई मित्र व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज री शुरुआत कीनी इनु पहली वह तकनीकी सेवाओं बारा माई लगाई जी प्रदर्शनी रो उद्घाटन कीनो और वन निरखी ई पाछे श्री शर्मा उद्योगों रा नुमाइंदा सागे बातचीत कीनी इस दौरान वे बतायो कि राज्य ने डेटा सेंटर हल्का माए 43,000 करोड़ रुपये बत्ती रकम रा निवेश प्रस्ताव मिलिया है आम आए एस टी टी जी डी सी एच जी एकाया और नायो बोल्ट समेत कई नामी कंपनियां शामिल है प्रदेश रा आई टी और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ई कार्यक्रम माए वारा विचार बताया खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका राठौड़ कहो कि तकनीकी नवाचाराओं न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन री बात सांची वे रही है
3: हर सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है और इसीलिए जो जनधन आधार और मोबाइल को जोड़ा गया उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर लीकेजेस खत्म हो गए आज यूपीआई जो पहले मजाक बनाया जाता था आज यूपीआई गांव-गांव में हो रहा है एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो रहे हैं कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं उसे हम राजस्थान में करें या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा
1: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राज्य सरकार का न्यू मिलर कराया जा रहा 2 दिन रा इन सम्मेलन रो मुद्दों विकसित भारत 2047 एआई एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस राखी चियो है सम्मेलन में काल न्यारा न्यारा प्लेनरी और ब्रेकआउट सेशन रखा जावेला। ये पाछे केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार देवेला। केंद्रीय कैबिनेट राजधानी दिल्ली सारू खास परियोजना ने मंजूरी दीनी है। मीटिंग में करी जिया फैसला ने जानकारी देता था का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बतायो कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग ने मंजूरी दी जी है। इनो आतुणी और लंकाऊ दिल्ली बीच जुड़ाव बेहतर फैला। ये काम माथा 6,970 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च कर जावेला।
4: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा न ध्यान रखता था का तैयारियां जोर शोर चल रही है। श्री मोदी रो बालोतरा रा पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड HPCL राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ने जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल रो ही उद्घाटन करेला। माणा बालोतरा खबर नवीस बतायो कि प्रधानमंत्री रा दौरा ने यादगार बनावण और हरित विकास रे अलख जगावण सारू मोटा पैमाना माथे पौधा रोप्या जा रहा है।
5: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहत स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इंसा गई आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। गृहमंत्री अमित शाह आबादी बदलावां रा बारा माय बनाई ची आला दर्जारी समितियों सिफारिशां बेगी देवन सारू कहो है। वे आज नई दिल्ली माय समिति रा सदस्यां सागेफी मीटिंग माय हुकम तीनो। समिति गृहमंत्री ने बतायो कि राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां रो दौरो कर अर ई बारा माय जानकारी हासिल करी जावेला। समिति जानकारी हासिल करण सारू प्रश्नावली बनाई है। ध्यान जोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लारला साल आला दर्जा रा जनसांख्यिकी मिशन रो ऐलान की न हो चिंपाचे रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर री सदारत माए आ समिति बनाई ची ही। प्रदेश रा सगला आंगनवाड़ी केंद्र माए आज खिलौना बैंक शुरू करी चिया। इस आगे प्रवेशोत्सव और पौधारोपण रा कार्यक्रम में राखी चिया। महिला और बाल विकास विभाग रे शासन सचिव पूनम जयपुर रा गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक री शुरुआत कीनी। इ मौके बच्चा ने प्रवेश किट ई दिया चिया। नंद घर योजना रा तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्र ने और बेहतर बनाया जा रहा है। पालीरा महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पंवार बतायो कि जिला रा 222 आंगनबाड़ी केंद्र ने नंद घर माए बदलीकरण रो काम पूरो फेक्यो है।
6: जिले में 222 नंदघरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिला है, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहता है जिसमें और केंद्रों को भी नंदघर में चयनित किया जा सकेगा।
1: स्वायत्त शासन विभाग रा सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन रा नुमाइंदा बीच आज जयपुर माए बातचीत हुई। इन दौरान यूनियन रे कुछ मांगा माथ एक राय बनी। विभाग रा सचिव रवि जैन खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का बतायो कि सरकार री ओर कुछ मांगा मान लिया पाछे सफाई कर्मचारियां रा संगठन दूजी मांगा न लेर अड़ रहा है। व कहो के सफाई कर्मचारियां री भर्ती माए मूल रूप उ साफ सफाई रो काम कर रहे लोगों ने प्राथमिकता दी जावेला
7: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस

0: इस रूल के अंतर्गत होगी। और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
1: सफाई कर्मचारी यूनियन रा अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया बातचीत ने सकारात्मक बताता था का कहो के सफाई कर्मचारियां री हड़ताल बेगी खत्म करन रे बारा माय फैसलो लियो चावेला। अरे बे मौसम, राज्य में आवता 2 दिन में चौमासा री बिरखा स्वरूफे वन रा आसार है। मौसम विभाग रे मुजब कोटा और उदयपुर संभाग रा कुछ हल्का माय भारी बारिश री संभावना है, जबकि 6 जुलाई ताई प्रदेश रा घनखर हल्का माय में स्वरूफे वन री संभावना है। इस साल चौमासा री बिरखा लारला साल री तुलना माय करीब 8 दिन मोड़ी स्वरूफे वन रा आसार है। मौसम विभाग जुलाई महीना माय प्रदेश माय सामान्य कम बारिश वे वन रो अंदाजो लगायो है। इन बीच राज्य रा कुछ हल्का माय चौमासा पहली री हलचल चाल रही है। लाडला 24 घंटा माय कोटा उदयपुर और भरतपुर संभाग माय थोड़ी घनी बिरखा भी। जैसलमेर माय आज आंधी चाली, भरतपुर माय संवारे भी बिरखा पाछे दिन भर सिलो बायरो बाजो। राजधानी जयपुर माय कठे कठे बारिश हुई। मौसम विभाग आज प्रदेश रा 24 जिला माय आंधी बारिश सारू चेतायो है। काल 4 जुलाई बीच बीकानेर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ माय जोरदार बायरो बाजन और आंधी चालन सारू चेताइचियो है। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल रा पहले वाला मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय री याद माय ओ दिन मनायो जावे है। इन दिन इलाज रा हल्का माय डॉक्टर राणा समर्पण सेवा भावना और इंसानियत रा प्रति योगदान रो मान करियो जावे है। जयपुर रा SMS मेडिकल कॉलेज री एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदिति इलाज रा पेशा न सेवा सागे खुद न संतुष्टि देवन वालो बतायो।
2: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूं। आप हमसे अस्पताल में सीधे न मिलते हो, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट आए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
1: आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार ने बदलाव रो मजबूत जरियो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा सारू तैयारियां जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलावां रा बारा माय बनाई जी आला दर्जारी समितियों सिफारिशां बेगी देवन सारू कहो। और राज्य माय चौमासारी बिरखा बेगी सरूफे वन रा आसार, उगणी हलकाऊं बिरखा सरूफे वन री संभावना। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, इस समय शाम के ठीक 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनना रहे सगले किसान भाया ने गोपाल भाई का निशियों
1: और भाई अर्जुन का निशियों
0: मोकला मोकला राम राम
1: राम राम गोपाल भाई राम राम।
0: अर्जुन भाई समय रूपी जी की घड़ी है भी को खेल भी देखो निरालो है
1: निरालो ऐसा
0: है हाँ। कद्दे ही देखो के समय रूपी घड़ी है जी डट्टे को नहीं
1: डट्टे को नहीं
0: ने कोई को इंतजार करे
1: इंतजार करे।

0: हैं। अब देखो के काल परसों आप बतलावा कभी जून का 5 दिन रहे, 4 दिन रहे, गयो जून तो
1: गयो जून है हाँ।
0: जुलाई वो मनो है जो चालू हो गया
1: हाँ।
0: और कोई भी जो काम करा तो भी को भी एक निश्चित समय है हैं। और बुढ़िया भी कहे कि भाई टेम पर कोई भी आपा काम करांगा तो भी को सफलता मिलने की गुंजाइश की है बात ज्यादा रहेगी
1: हैं।
0: बार अपना जगह किसान भाई तो भाई खेतांग में देखो के खरीफ फसलों की बुआई को जो को काम है भी को लाग रही हैं। पुराने टेम के मां बिरखा है जगी इकल होया करती 20 कोस में 50 कोस में 60 कोस में कोई ने बूझने की एक फोन करने की जरूरत ही
1: नहीं थी
0: हैं। एर बा लस उठती तो बूढ़िया जी का ही बा लस जगी है बा जी हाँ धीरे धीरे धीरे धीरे आगे चलती ने व्यू में अंदाजो लगा देता है कि भाई आज वो 20 कोसी की मां इति इति आंगण में है तो बा बाकी बात है जी एकदम पार जाती पर आजकल यहाँ को नहीं आजकल स्थिति आगे के आधे खेत का मां तो पानी पानी कर दे आधे खेत का मां दो आंगल छाट
1: है आधे खेत में सूखो भी रह
0: जाए। हाँ असमानता जी की है ने वह बहुत ज्यादा होगी। अब लाल ने अपने देखने का मां आयोग के बहुत सा इलाका ऐसे ही मां पांच छह बार मी हो गयो है। कई इलाका ही मां कम हुयो कई ईसा इलाका पांग बीच में ही बच रहे हैं बट है छाटी को नहीं है। अब कोई जो बतावे ने कि ना भाई मार तो कौन बरसियो कहीं हो या करेगे मारे तो चार चार पान का मुंह हो रही पड़े पानी है बेरो को नहीं कभी किसान का ही बे मेज जोर को जगो जदीद खेत बाऊंगा
1: हाँ, सही है? बात है हाँ।
0: तो ये खातर है खरीफ फसलाएंगे जब आप बुआई करा तो व्यू पहली अर्जुन भाई देखो के अपन खेती संबंधी कई काम करना पड़े
1: सा।
0: तो बंग बारे में किसान ना बताओ
1: देखो कह गोपाल भाई सबसे पहले आपने जिकी भी खेती है
0: हाँ।
1: तो बिने तैयार करनी बहुत जरूरी है चाहे आप सिंचाई हो या बिना सिंचाई हो क्योंकि जब आप अपने खेती बाड़ी करा तो आप यहाँ देखा आखा 30 दिन आप कोई सुन करा बोझा काटा बांसो काटा पानी को ले जाओ बटेर वो पीडियो बांध के लिए शुरुआत बटू करा अगर भी टाइम पर अगर आप यहाँ देख लिया कि आपने खेत का मैंने अपन पार्ट कराने की जरूरत है या यहाँ मान लो कभी खाद गिरने की जरूरत है तो पूरी जट्ठे से चालू होना है
0: अच्छा
1: भट्ठे से लेकर जब तक वो बरसात नहीं होना है भी के पहली पहली अगर आप अपनो खेत एकदम तैयार कर लेवाना है जब तो देखो भी को मोकड़ो फायदो मिल जाए
0: हाँ, हाँ।
1: कई बार आप यहाँ कह दिया के भी आपने खेत ने तैयारी करी आप सगड़ी चीज करी तो एक सागे सागे अगर आप अपने खेत की माटी तब भी अगर जांच करवा लेवा तो भी को भी अपना मोकड़ो फायदो हो जाए।
0: भाई एक टेम हो जाते कि एक माटी पानी की जांच हो या कौन करती
1: हाँ।
0: और इन्हें बिने कि एक सुविधा भी कोनी
1: कोनी
0: है हाँ हाँ। तो किसान है जगह कराऊं तो कठा
1: कराओ हाँ।
0: पर आज को तो टेम इश्यू है कि जगह जगह व्यवस्था कर रखी है सरकार है
1: करे
0: और कोई ज्यादा रुपया पिसा भी कौन लागे कोई 2-4 रुपया की नाम मात्र की रसीद कटे
1: 5 रुपया कम से कम
0: हाँ। एर एक दिन में 2 दिन में वह मिट्टी पानी की जांच करके रिपोर्ट बनाकर किसान ने दे दी
1: दे दे वैसा।
0: अब जांच हो जाए तो भी हूं किसान ने बात को बेरो पड़ जाए कि भाई पोषक तत्वों की आपने खेत का मां की स्थिति है हैं
1: कौन सा
0: बीके साहब देखो खाद पानी देने की व्यवस्था करे और बीक मां मात्रा जी की वह भी लिखी जावे कि भाई एक ही कमी है तो प्रति बीघा या प्रति हेक्टर ई हिसाब खाद गिरो तो खेत की जी मृदा है पोषक तत्वों को जो को एक संतुलित अनुपात जो को है वो बन जावे क्योंकि कोई भी फसल जब आप खेत में बावांगा तो देखो के बिकी बढ़वार सही हुए फल फूल सही लागे हैं तो बिक के लिए आपने खेत की जमीन जी है बिक मां की एक ताकत होनी जरूरी है
1: है?
0: अब ताकत जी है बा किया मिले के कोई चीज की कमी है तो बिना आप पूर्ति करांगा जद की एक बात की जगह है वह मजबूत होगी
1: हाँ।
0: अब पहली खेतांग में आप देखा करता के झाड़ी जगह है ना जगह रांग बोलता तो वो बहुत होया करता

0: अरे काम धंधो करने के बाद में पल्लो काटता ने तो जगह जगह देख लेते यहाँ बाकी लंगर लाग जाती
1: लाग जाती साहब।
0: है। अरे मोकलो तो पल्लो जो पल्लो जो है आपने बकरिया बाबरी चाह के खाए
1: खाया करती है।
0: है। अरे बोरिया होता तो बे घराम छोटा छोटा टाबर होता तो सारे दिन गोजी भरिया ही फिरता है। पड़वा तो भी टेम बे बोरिया जगह मिठड़िया बा देखो के कूट के अरे
1: कोडी बनाता।
0: खुडी बना देता
1: हाँ
0: है और
1: हाँ
0: खता ठाटू
1: खाता।
0: क्योंकि बीज के माइंस की गुड़ी हुए ने वह बहुत जोर की हुए
1: जोर के
0: और
1: ताकतवर
0: खाने में देखो के आनंद आवे है।
1: आनंद आवे। हाँ वो एक सागा भी देखो जैसे अपने के झाड़ी होती के सागे देखो मुराली होती सनिया होता है बोई होती और ज्यादातर देखो फोगला भी बहुत जोर का होता।
0: भाई काम की चीज हम सगड़ा हम फोग है
1: फोग है
0: के जक्के इलाका में जक्के खेत का माँ जितनी ज्यादा मात्रा का माँ फोग हो या करता। एक तो वो खेत है जो कदई उतर तो कोनी
1: उत्तर तो वो नहीं।
0: एर बे फोगला लासू जगह झड़झड़ के पड़ता और फोग के नीचे देखो जिसकी जगह होती ने वह इतनी खट्टी हो जाती कभी के नीचे नाज या कोई काकड़ी मतीरी एक बेल होती ने तो भी के बे फल जगह लागता बे एकदम मिश्री भर का मीठा
1: अलग ही दिखता है
0: है।
1: पूरे खेत में अलग ही दिखता है।
0: हाँ अब आपा रायतो जो को बनावा फोक लिए को वो देखो फोक के लागे
1: लागे सा।
0: ठंडो बहुत है गर्मियां में रायतो बने हैं। लकड़ी जगी है फोक की बे इतनी सुनत्याली हो एक कांटो को नहीं हो
1: कोनी हो सा।
0: लुगाई पताई तोड़ के जो बांध ली बनावे हाथ में कांटा कौन कड्डे
1: कौन कड़ा है सा
0: हैं।
1: कौन कड़ा।
0: भी कलावा जी अपा सांड बहते रखा तो आगे नेकस जगी बने गिरबान जगाई
1: हाँ
0: तो बे देखो कई फोक की लकड़ी का बने
1: फोकी लकड़ी का बना।
0: हैं।
1: हाँ
0: इसके अलावा भी आज की लकड़ी है अब बहुत कीमती
1: कीमती चीज
0: है पर मुख्य बात आ होगी के खेत में जे फोग हुए तो भी खेत को जो कोई हिसाब किताब है ना वो न्यारो ही रहे
1: न्यारो रहे।
0: हैं। अब धीरे धीरे जो रंग हो वो भी देखो के ट्रैक्टर हूं तो तपलाऊ करा करा की पाड़सो काट दियो
1: पूरा काट
0: के
1: दियो।
0: झाड़ का गाबा पटे पगा सूल गड्ढे आता जाता टावरा गिड़ गया पाट की पिंडी पाट की कोई को हाथ पाट गयो कोई को कान में कांटो गलियो
1: भी लावणी करते
0: है।
1: टेम बोलो दोरा तो भी
0: हाँ
1: गाड़ा जाना
0: अब थे जाड़ों के खेती बाड़ी को काम कर सी आज ए लफड़ा तो रस्सी
1: रेसी सा
0: है। ए लफड़ा तो रस्सी अरे लफड़ा को नाम ही जिंदगी
1: जिंदगी है।
0: है
1: भी खेत में जाओ अगर थारे कोई कांटो नहीं गड्ढे कोई झाड़ को नहीं फटे तो फिर खेत जाने को स्वाद क्यों हो। क्योंकि खेत का मायने आपा अगर अपने खेत का मायने अगर झाड़ी है और अन्य कोई दरखत है तो वह पालेंगा तो भी के माध्यम से तो अपन कोई चीज जमीन से निकलेगी। भी आपा जी हमालियों का बार के टाइम में हमालियों का पूरा ही काट रखे है कट्ठे
0: हाँ
1: भी हैं कोनी के पालो खड़े है कहीं गोणियों खड़े है बुई है बांसो है इरणो है एकदम को छोड़ बी के हिसाब से। अगर अब देखो के वर्तमान के मायने अगर कोई फसल करा तो बा देखो के अपने इलाके के बहुत कमजोर है और बी के तुलना अगर पीछे करा ना पा तो यहाँ देखता के आपा पहली तो बहुत जोर को एक साथ बाजरो और मूंग और मोट सह गिर बहुत जोर का लागता। आजकल अगर नाका नाके गिर के देख लिया तो वह लागे को नहीं। तो वह को मेन कारण वही है का आपा जकी खेत का मायने है जगह बुई बांसा सनिया ए झाड़िया बने बारह काट काट के पूरा गिर दियो।
0: भाई कई कई किसान जगह खेतन देखो के आंगने बुरका कर दिया
1: कर दिया सा।
0: है कोई पेड़ पौधा तो बानी सलटा दिया।
1: बाने सलटा दिया
0: अब बे के करू और यही वो तो बही जाने पर काम माड़ो है क्योंकि रूम तो चाहे खेत हो चाहे कोई हो जगह पर जीता जाता हो सी ने बीतो ही देखो के फायदो
1: फायदो है।
0: है वन काटांगा और लगाऊंगा नहीं तो भी मैं तो नुकसान दो आपने ही उसी
1: भी नुकसान आपने अच्छी थे शुरुआत में बात बताई बहुत बढ़िया बात बताई के पुराने जमाने में आपा देखता बुढ़िया कहता के बिरखा 20 कोस 25 कोस 30 कोस होगी।
0: हाँ
1: अब भी को मेन कारण वही हो गयो के आपा खेत में रूह कौन छोड़ा आपा रूह के रह फोगला है ए तो सगड़ा आपा काट काट के बाहर कर दिया। अब एकदम से प्लेन जमीन बना दी तो भी को आपा ही खुद ही भी का जिम्मेदार बन गया भी का बरसात अठे अठी इलाके में होगी कि कोनी होगी। पुराने जमाने का माने एक साल बरसात होती के भट्ट तंग होगी के सब खेत एक साथ चाल रहा। अब यहाँ देखा एक बगल का मान देख खेत में बरसात हो रही एक में हल चाल रहा एक में कोनियो ही सुक्को हो रहा। आ पोजीशन आपा खुद ही बिगाड़ दी क्योंकि आपा जठे रूख है बन काटा भी की जगह आपा लगाया हाथ को नहीं और भी की जगह नहीं लगाया तो आपा ने भी को नतीजो सामने आ रहे
0: भाई पहली खेतम जी की म्याल होया करती
1: इरना की बोलिया करता।
0: सीम कहते हैं आपा तो सीम

0: में बे चोड़ी चोड़ी होया करती, 20-20, 30-30 फुट की
1: होया करती।
0: और बिगमा हरणा जगे बा कोई तो तकड़ो जाल हो तो के पूरे खेत के चारों मेर देखो के बाद दीवार को सो काम करती
1: है।
0: गर्मिया में तो आंधी चालती तो भी अपने रेत ने रोकने को काम करती,
1: काम करती
0: खेत को बचाव करे,
1: बचाव करती।
0: एर सियाड़ा मुतरा दी जिकी ठंडार आवे ठंडी पून,
1: ठंडी पून
0: तो भी देखो के अपनी जिकी फसले बांगी सुरक्षा करे
1: करती।
0: बी के अलावा जगह जंगली जीव है तो बांगो तो रेजिडेंस बे म्याली तो बे बम घोरी खोदड़ी रखे ने बे बंग मा देखो के बढ़िया रहे,
1: बढ़िया रहे
0: भाई। बन कुण कमरा बना के दे, कुण कूलर पंखा लगा के थोड़ी देर रखे है, और बन कुण सो जागे कहेगा आज टमाटर खा लियो चीकू खा लियो है, थोड़ा सिंधो नमक ले आगे लगा जान लो जीम लियो थे
1: बांका तो बोई सिंधो नमक है देखो भट्टे न्याल का मारे खेत में वापर जावे वो तो बांका ही हो।
0: हाँ अब देखो प्रकृति जी की यहाँ जीवा की भी देखो कितनी तकड़ी व्यवस्था कर रखी है। घर जगह अपा दूध देना जगह डांगर रखा चे गाय हुए भैंस हुए बकरी हुए है, कदे बारह बन और कदे माँ बन और बांगा देखो ठान बुआरो और बन पानी कौन पिए और बन कुत्र छान के कौन गेरी भा भा पूरा गांव ने अधर कर ले कई डांगर तो इसी आवे जगो पान थोड़ सी 30 लाख हजार जे पानी नहीं पिया हो नहीं तो बे देख लियो थे
1: करो मचा दे
0: और बांगे कंठांग में यहाँ अजीब सी आवाज निकले जब पांच कोस तक सुने
1: सुने ऐसा
0: है
1: सुने ऐसा
0: भूखा हुए तो बे देखो के गांव के मां गरनाट पार दी
1: राम लाग जावे
0: राम लाग जी
1: राम लाग जावे यहाँ बुझा रहा भैया के बात आज नीरी को नहीं पानी बन पाए आ बुझे
0: अब बाई बा व्यवस्था हो तो जाके डटे पर सोचने की बात आ है कि म्याड़ा में जगह रहना रा जीव है तो जे म्याड़ी अपा खत्म कर दी छीवी खत्म कर दी तो बे जीव घट जाऊंगा है क्योंकि धरती पर जगह जीव जंतु प्राणी जीता भी बढ़िया ही तो बे से देखो के अपना कोई दुश्मन थोड़ी बे कटे न कटे अपनो हित भी कर रहे हैं है? इसी बात को नहीं चाहे सांपला हुए चाहे बोट बिल्ली हुए चाहे लुंगड़ी लांगड़ी हुए है जीता भी पक्षी तो बे सब कटे न कटे देखो के अपना जो छोटो मोटो जे नुकसान करें उजाड़ करें तो कठिन कटे फायदो भी
1: फायदो भी करें
0: हैं। फिर बुढ़िया को तो वो मानो का भाई खेत आप तो बंग मा सगड़ों को सीर है
1: सगड़ों
0: हैं। कुत्ते कौन बिल्ली कौन गाय कौन बछड़िया कौन सांड को दे कौन कोई इन्ने मिन्ने मंगना हो बांको सबको सीर हो
1: सबको सीर
0: है। और आपने देखो कर्तव्य भी बनाया भाई अपन नटना भी नहीं चाहिए
1: नहीं चाहिए सही बात।
0: तो ये खातर किसाना देखो का ज्यादा में ज्यादा हरियाली रूख जगाई वह लगाना चाहिए सीम जगी वह काट काट के एकदम देखो कि यहाँ फाटके पर की ना करो
1: फाट पर कर दी कहना तार बंदी कर दी बीच की
0: भाई फाट का वो पतली कर दी फाट को ही 1-1.5 इंच को है अगर तो पहली काट डालो
1: वो बीच से पतली कर दी।
0: हाँ वो फाट को जो 1 इंच को जो मान के चला तो ये पट्टी रोप रोप के तार बांध दिया थे मानों को तार है जिसकी मोटाई कितनी मान सो और देखो तार में ही गुंड बस झटका करंट आ और लगा रखे
1: आवारा पशु नहीं हाँ।
0: कोई इन्ने भी ने आदमी गांव घूमते रहे जाते हुए रात ने नेरी रात हुए देखा है भाई अटसी पट्टी का सार सी बैठ गए पेशाब कर लिया और भूल को एन बाण हुए तार का हाथ गालने की कोई पकड़ गए
1: पकड़ गए
0: अब साहब वो तार का हाथ गाले हाथ गालता ही वो देखो गए
1: भूल जा
0: हालत हो जा खराब अब मार ले गांव में देखो के एक दो जना इशा रात बिरात इन्हें मैंने गेड़ा एर वहां को पकड़ गयो
1: अच्छा
0: आखड़िया भाई आखड़िया जब पग चप्पल निकल गई और तार गेड़े हो जब इशो कसू तो जपीड़ पाटे हो जगो पक्की हड्डी जगी है ने बा टूट की कई दिन तक पट्टा बनाया हाथ में डांग लिया इन्हें मैंने फिरता अब बताओ तो तकड़ो भी को क्या झटको लग गए है। अब डांगर डोर जगा और हमें रात ने चरता चरता घास हो आगन के मुंडो पजाणो छावे अब वो तार अड़ता है कभी वो तो बचीड़
1: उपड़े
0: तो बांगे बाग कहानी समझो को नहीं आवे भाई वो यहाँ जाने की हम लोग किया
1: होगी है सही बात है।
0: तो अब थे जानो के एक घटे जा
1: कटे सही बात
0: और किन कह दे भाई मारखा मारी प्लेट घटे
1: है
0: तो प्लास्टिक का हम कौन खा में तो स्टील की भाई ले जिमांगा पात्र में जिमांगा तो प्लास्टिक की है कोपड़ी चमचड़ी या ए थारी काठी राखो मान तो स्टील वाली लागी दो ए कदे ही गुन गए
1: को नहीं कहता
0: है। और ए नाक के जा तो बताओ जा कटे
1: भी आपनो है मोइया बात है कि आपा जद भी आपा खेतीबाड़ी करा

0: हाँ।
1: तो भाई अया देखा के आ एक थोड़ से के ज्यादा इतनी तो अब जिया मान लियो सावन बाद में सगड़ा खेत बोवे
0: हाँ हाँ।
1: तो आ झटका मशीन बार अठा देनी चाहिए भी अया होया के देखो के गांव के सारे पार को नहीं पड़े बा एक अलग चीज है
0: हाँ।
1: लेकिन अया नहीं के सगड़ा खेता का मायने जिया मान लिया बार थे कोई गाय की बात करी या मिनख की बात करी अया अपने जखा मित्र पक्षी है मित्र जखा भी जीव जंतु है वह भी तो अपना आना चाहे है तो बन अगर आप खेत में ही कौन बढ़ दे तो वो अपने फायदो क्या कर
0: भाई अक्सर है अर्जुन भाई आप देखा के जिया आदि नाम जिया बांध करवावा दिन के या आप खेत की बुआई करावा
1: हाँ।
0: तो थे सीयू का मां खड़े हो गए गोरू देखियो वो ट्रैक्टर जो को चलेगो ने तो चालता ही 5-4 फुट वो जी आगे चलोगो तो एक जमीन का माऊ बहुत ही जोर की जी खुशबू है ने
1: बाहर
0: निकले
1: निकले ऐसा
0: है
1: निकले
0: तुरंत ही एहसास हुए और जिया जिया खेत में के वो ट्रैक्टर चलेगा और खेत बात हो जाएगा पूरा खेत का माँ देखो कह अरबी की खुशबू हो
1: खुशबू
0: जाएगी
1: हो जाए हाँ
0: फिर भी के लेने देखो ए चिड़ी कागलार कोयल तोतार मैनार कबूतर ए गुरसली जगी ने ए जिया जिया वे जीव जमीन निकले ने बिया बिया के उठा उठा के पटापट खजिया
1: खाजिया सा
0: खजिया ने तो खजिया वो किसान की बा मदद होगी ने
1: मदद होगी
0: हैं के जमीन में जगह बिल बना के कीड़ा कंटा जगह फसला नुकसान पुगावे बाने पक्षी जगह चुगले
1: चुगले वे
0: तो ई खातर अपन देखो के आपने हरेक जो काम है ने वो स्वार्थ के हिसाब को नहीं देखना
1: नहीं देखना चाहिए
0: ए जितना भी जीव जंतु धरती के ऊपर है प्राणी मूक प्राणी बोलने को नहीं पर तो समझा कि भाई ए कट्ठे जांगा तो ई खातर की है के अपन भी यहाँ की देखो के जिया जिया उसके जटे जटे मदद करनी चाहिए और रही बात खरीफ फसलां की तो खरीफ फसलां की जब आप बुआई करा तो भी पहली जगह सूट संबंधी कार्य ही चौकी तरिया कोई जंटिया की झापड़ झुंपड़ काटनी ही इन्हें बिने जो कोई खड़ा लकड़ी एक भींट का बिछाड़ा ही माटी रोकन खातर तो बाने एक का नहीं किया गया एडे सिर के मिर्डो लगा दिया तो वह पगंग मां गड्ढे को नहीं आपने क्या कहा कि जब काम करा बी टीम देखो खेत का खेत में ही काम आ जा है एर मैंने तो अर्जुन भाई जीती करांगा ने बात खेती सारू ही को नहीं ते कोई क्षेत्र का मां जाके देख लियो और या करके देख लियो प्रयोग है कि जको आदमी मन लगा के कोई काम ने कर सी ने तो भी को प्रतिफल जुको है ने वो देखो हमेशा बढ़ गया होगा
1: बढ़ गया होगा और एक सक अब भी देखो के देखो भी आपा जो भी आबाद तैयारी कर रहे क्या आपा ने ई बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपा जद भी खेती बारिया और आपा बीज लेके आवाने तो आपा भी बीज की लेने की कोशिश करा कि आपने क्षेत्र को बीज होवे
0: ठीक
1: आपने वातावरण को आपने जलवायु को जो तैयार हो भी बीज को अगर आप प्रयोग करेंगा तो भी कमाने आपा के नुकसान को नहीं होगा कई बार आप यहाँ देखा के बाजार से थैली लिया
0: हाँ।
1: और बाद थैली उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब जो भी है बा सिंचित थैली
0: ठीक
1: आपने जो भी क्षेत्र को जो भी बीज है आपने खेता में अगर तैयार करेड़ो है आपने इलाके में तैयार करेड़ो है
0: हाँ।
1: अगर भी को प्रयोग करेंगे ना आप तो आपने फायदो ही फायदो होगा कई बार आप यहाँ कर दिया जे चलो ठीक है भी आपने उपलब्ध को नहीं तो आप अगर कोई बाजार से भी चीज खरीदा बीज भी लेवा तो बिको बिल पक्को बिल लेनो बहुत जरूरी है
0: जरूरी है
1: क्योंकि कई बार आप यहाँ कह दिया फलाने के साथ मत बीज ले माले खेत में तो उगी को नहीं
0: हाँ।
1: तो बिको अपा देखो के आर्थिक नुकसान को नहीं उठा सका भी आपने जो मान लो बीज का आजकल देखो के 1,000 2-3 हज़ार रुपया लगे
0: लागे
1: तो बिक मायने अगर आप अपने देखा कि आपने खेत का मायने अगर आप बाजार से बीज ले तो बिक मन यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि भी वो नेरी इलाके को है या बिरानी है कौन सो है भी के बाद में अगर आप यहाँ देखा कि भी वो बिरानी में तैयार हो रहा है तो वो बीज लेके भी को पक्को भी लेना बहुत ही जरूरी है
0: भाई कृषि विज्ञान केंद्र जगह आपने खुल रहे हैं तो बंग मा देखो के नए नए तरह का नवाचार जगह होता रहे
1: हाँ।
0: और फिर इलाके के हिसाब पहली बार खुद देखो के जगह कृषि विज्ञान केंद्र ने भट्ठे बा के जगह नई बीज को बनावा ने तो भी पहली बार भट्ठे आपके बाद प्रयोग करके देखे पी के बाद में वे देखो सरकार ने सिफारिश करी फिर वो बीज है जो देखो के बाजार में आवे बिकन वास्ता है तो आपने तो किसाना नो ही कहना है कि भाई ये आंख मीच के बीज जो है हर कटाऊ नहीं लेना चाहिए क्यों के पहली तो ज्यादातर है जो बीज है वो किसान भाई घर को खेत में ही तैयार करया
1: करता
0: है वो ही बीज राखता वे चाहे वह फलिया के रूप में सीटिया के रूप में जब बाणा को टेम आ तो भी टेम के मोगरिया कूट

0: के
1: काट लेता
0: और काट लेता और वो बीज है जो खेत में बा देता तो वो काम आ जाता। पर अब जहाँ बाजारू लिया तो भाई इन्हें बिने के कोई पक्की दुकान हुए जठे विश्वास हुए हाँ भाई अठे ठीक मिले तो बठे ही देखो के अपन है जो वो बीज

0: मार लो है, मार
1: क्या
0: लो बीज है जो कनियो क्या को बीज खराब हो, वो क्या को उगो
1: कहो
0: है, तो ये खातर उजाड़ हो गयो ने।
1: उजाड़ हो गयो। दूसरी बात, जब भी आप कोई बीज ले आवा या बाजार से ले आवा तो बिल्कुल उपचारी करके भाड़ बहुत जरूरी है। क्यों कह, कई बार आप यहाँ देखा कह जिया मान लो के बाजरे ले आया, अगर आप जिया मान लो के एक तो गिल्लो उपचारिक होवे एक सूखो उपचारिक होवे,
0: हाँ
1: भाई दोनों तरीके का अलग अलग तरीको हुआ। जहाँ कई बार आप यहाँ देखा कि बाजरो बढ़िया बाजरो है तो बाजरे ने अगर आप बेकी
0: हाँ
1: भी कमान कोई भी आप कोई भी दवाई मिला है, कोई केमिकल मिला या मान लो आप फाके की दवाई मिला दी भी, तो बिन ने अगर देखा तो वो जो भी बाजरो है जो है यहाँ मान लो खराब हो रहा वो एकदम सुपर तिरने लग जैसी,
0: हाँ
1: तो बी के हिसाब से कर लियो। जहाँ मान लो अगर आप कोई सूखो उपचारी करना है तो आपने जो भी साधन है ड्रम है बाल्टी है पिपा है भी कमाने गाल की पूरा भी कमाने हिसाब से दवाई लगा के करो, उपचारी करना
0: तो
1: बहुत जरूरी है।
0: भाई आ बातों को अपना किसान भाई ध्यान रखेगा, एर इतना भोला भी कोनी,
1: कौन सा
0: क्योंकि ये काम तो आपा आई साल करा
1: करा
0: है, एर जुलाई भी आई साल आवे और मई भी आई साल
1: आई
0: आवे,
1: साल आवे
0: एर किसान इस जगह भी देखो के बहाना रो काम है जो करें, पर आपा के एक बार बताता रहा कभी थे फिर भी कोई प्रकार की गलती जगी है ने वह ना करियो, ताकि आपने आगे चाल की के उजाड़ है जो सामने न आवे।
1: नहीं आवे।
0: अब किसान भाई ने मुरली राजस्थानी की आवाज रमाई एक लोक रचना सुना देवा।
1: सुनाओ सर।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: हाँ तो किसान भाई, एक बारी थारो फेरू स्वागत करा और अंतराल से पहले देखो के आपा मुरली राजस्थानी और साथियों की आवाज रमाए। हाली तेरा खेत पड़या है दूर खेत में, दिन छिप जासी रे, लोक रचना आपने किसान भाई ने सुनाई। अर्जुन भाई, महिलाज के ने बने अपा घर की कुशल प्रबंधक कया करा, अरे वह भी है, पण आपने देश में देखने के मावे के महिलाज की बे घर की को नहीं, जगह खेती बाड़ी का काम है ने, बाकी भी वह बहुत तकड़ी एक्सपर्ट हो।
2: एक्सपर्ट नहीं क्या मान लो कह, देखी भी खेती बाड़ी किसान करे ना।
1: हाँ,
2: अगर भी के पीछे महिला नहीं हो तो वो किसान अकेलो बा खेती कर कौन सके,
1: कर कौन सके,
2: क्योंकि भी को ओ जा कर जिया मान लो खेत में गयो कोई काम हो गयो तो वो आदमी अकेलो को नहीं कर सके।
1: सही,
2: दिन के पहले उठ के चल जाओ, चाहे दोपहर में चल जाओ, बिक आयो चीज जाकर मान लो कोई भी बीरवा नहीं है, कोई रोटी लेके जाए, कोई पानी लेके जाए, बोझा कटान जा, मतलब आ है कि जिको भी पुरुष जितो सहयोग करे भी को बराबर को महिला सहयोग करे।
1: हाँ,
2: जिक ये मान लो कह जद्दी बा आगे आगे पीछे गाड़ी चाल बकरे भी आपा कही कट देखा के अपने इलाके का तो थोड़ा सो यहाँ साधन कम है।
1: हाँ,
2: और जट्ठे सिंचित एरियो है, सिंचित साधन है, बठैया मान लो के 60-70% महिला है,
1: हाँ,
2: खेती बाड़ी का भागीदार में
1: भाई जे हिसाब किताब देखे ना ईमानदारी।
2: हाँ,
1: तो आदमी ना ज्यादा काम लुगाई करे
2: करे ऐसा,
1: चाहे नौकरी पे से वो काम हुए तो भी बात ज्यादा करे
2: करे
1: है।
2: हाँ,
1: अब आजकल तर सो चाल रही नौकरियां को आप कई जगह देखा गए, दोनों नौकरियां होने तो घर को काम वालू आई पूरो करके कलेवार पानी ताता ठंडार, कोई बूढ़ो ठहरे तो बिको टाबर टिको करके फिर भाई देखो फटाफट आपकी तैयार होकर जी स्कूल ही जानो
2: है।
1: फिर घर आसी तो वहां खतर कोई परांठा बना के कोई टिफिन में तैयार थोड़ी मिलेगा, आता ही कुरड़ो करो और जिम ने बैठ जाओ प्लाथी मार के घर आता ही मांगे काम फिर चालू हो गयो है। एर आदमी है तो वो तो आपका गाबा बदल यार मुंडो धो गए बाड़ागमा काट गया हाथ वो तो उबासी लेने लग जाए, बंद नींद आव लगी, रोटी लिया तावड़ी सी फटाफट लिया
2: फटाफट लिया,
1: पर बिनिया फिर को नहीं फटाफट, अब कोई मशीन थोड़ी है बनाने में भी तो टाइम लगे है। अब सावा सब्जी एक रायतो जो भी आवा बनासी, फिर रोटी बनासी, फिर कोई सलाद काट सी, फिर थाले बाटकड़ार चमचड़ा राज गाले भी किया, बहुत ठाडो काम हो गया
2: है। हाँ,
1: कोई का पट्टो लगाओ और कोई का स्टूल लिया और कोई क्यों
2: कोई
1: क्यों है भाई, न्यारे न्यारी की डिमांड रहे।
2: हाँ, अलग अलग रहे
1: पण वा महिला जी की है सारा काम देख ले एकदम फटाफट फटाफट करके एर बे तो आप ही चलू करके पी के पानी ले डकारे एर आंख मिचली
2: खाट पकड़ ले
1: हैं।
2: हाँ,
1: एर 5-7 मिनट में आजकल किए का ज्यादातर लोगों को सांस
2: बाजा लगो
1: हैं। खड़े तो कई कई जो या जनरेटर से चला दे कोई को जो सांस नहीं बोलते है ना, और सारे जो कोई सूते हुए तो नींद को नहीं आवे हैं, क्योंकि वहां तो सोता ही खड़ाटा पड़े जोर का
2: पड़े
1: पण बा महिला जी की है बा सन जिमा जिमू के भी कबाद में जिमे है। कई बार आप भी देखने का मावे है सब्जी गुन मंची है, कदे वो है के दही पांती को नहीं हो, छा पांती को नहीं है, कदे रायतो पांती को नहीं हो, कदे रोटी कम पड़ गई है, कदे की है के भोजन बढ़िया बने हुए भूख कम हुए पण फिर भी जिया दो रोटी खाना और 7 रोटी खा गयो है। अब कोई के मुंडा में हाथ दे के गाशे गिरावे थोड़ी है
2: ना।
1: अब वो खाज को खाई अब आखिर मां देखे के भाई छबड़ी है मां तो पहली पोती रोटी जी आप गान दिया करता बा एक बंची है तो अभी लुगाई का तो वो लड़ो बीबिया ही रह गयो है कहे तो ग्यारस करो अरे रोजू आटो लगा के रोजू कोई सब्जी सब्जी बना के है अब सब्जी बनावे रोजू रोटी राटी बना के कोई बर्तन मानो माज के लिया इतन बे साहब पाछा पलाती मार के बैठा हो जाएंगे भाई चाको टेम हो गया
2: चाको टेम हो गयो
1: वह चाह बना के लिया इतन कोई टिंगरा जा वो का मन कलियो गाल गए इतन आथने का टेम हो जा कोई गा बाजड़ी रखे तो ताता ठंडा रे दूध काढ़ना रोजू बह लफड़ा फिर रोजू भोजन बनाओ सन जिमाओ बर्तन मांज के लियाओ बंचे तो खाओ है तो कहने को मतलब वो है के अब ई बात को बेरो किया पड़े बहुत से घर हम देखा के विवाद को कारण जो है वो है के आदमी इसका केक ऑर्डर मार बो करे
2: ऑर्डर मार
1: बो यहाँ कौन करो और बिया कौन करो और थे के करो घरान घरान काम किए
2: काम किए
1: है हाँ मचा तोड़ो थे सारे दिन पर बिन के स्थिति मान एकदम उल्टी करके देखो
2: देखो
1: है का भाई एक दिन जी है जी आदित्यवार की छुट्टी हो ने भी आज यहाँ दोनों नौकरियां हैं तो भाई एक दिन फिक्स कर दियो
2: फिक्स
1: क्या भाई आ सोमवार ने आंगली कुन लगाओगी काम जो को है
2: पूरा थाना
1: वह बनना सा खुद करेगा
2: खुद करेगा
1: है एक दिन में ही वेरो पड़ती सी अगले सप्ताह भाई बदल दोगे मंगलवार की छुट्टी है हैं का मंगलवार महिलाएं जी को फलका फलका कुछ नहीं बनाओगी ऑर्डर देंगी जी थे दो भी यही अरे भाई कुर्सी जाजम लगाओ सलाद लियाओ नींबू लियाओ मिर्च लियाओ वो सिंधो नमक लिया और धोड़ियो नमक लिया और वो मीठो पानी लिया और गिलास स्टील आ रहा लिया और एक दिन ही अर्जुन भाई टप्पा को नहीं
2: कोई नहीं टप्पा सा
1: तो कहने का मतलब वो है के महिला जी की हुए भी की कट्ठे आदमी जी की वो बराबरी कर कौन सके
2: कौन कर सके
1: है और आज को तो इशू टेम है के कोई से क्षेत्र के माथे देख लो महिला जी की है लड़की जी की ही वह देखो के छोरा ना बहुत आगे निकल गई
2: आगे निकल है
1: ए खेल कूद हो रहे हैं तो पाम देखो अखबार में पढ़ना आपा देखो के छोरे ही छोरिया का नाम आवे,
2: आवे
1: है
2: आवे।
1: कोई रिजल्ट आवे अखबार में फोटो छपे छोरे ही छोरिया की कोई और नौकरी पीछे को रिजल्ट आवे तो बीम नाम पढ़ा है तो बीमे भी देखो के छोरी छोरी है
2: आवे
1: तो कहने का मतलब वो है कि हरेक क्षेत्र में देखो के

0: एज की महिलाएं यहाँ को योगदान बहुत जोर को है, और खेतीबाड़ी का जगह काम है मान लो नौकरी पे सारी को नहीं, तो वह घर को सारो काम के निपटा के रोटी टुकड़ो तैयार करके जगह खेत में काम कर रही, वहां खातर सब्जी रोटी दही राबड़ी प्याज यार चाचीनी देगचीन गिलास जरी होल माचिस फूंगड़ी तका बा देखो के बटलम गाल के लीजिए
1: ले जाता
0: जानता ही बन जिमावेगी अब जिमने बैठेगा के बैठी के देखे पानी घड़ो भर के ले आओ खाली पड़ी है
1: लट
0: अपन जिमन गाल के देगी रबा बिचारी देखो घड़ो ले के कुंड पर जागी वो घड़ो भर के ले आवेगी है इतन में जिम लेगा अब रोटी जिमड़ा इन्हें भी ना हाल के एक पांच चढ़ा गया इतन वो एक घड़ियो पानी पी जिया बिकत हो जू भाई खबी
1: भाई खबी
0: है अब वो पानी वो घड़ियो ले आवे इतन देखो कह कह दी कह चा कोठे में चा चढ़ा दे के है भाई ने भी ना कोई छाना लकड़ी ले आवे यार फिर चा चढ़ावा वांगे चा बना के दी है फिर वांगे सगे लागे बा काम करे जदे
1: एक पांच उतारे दे ज्यादा ने तो
0: हां वांगे सगे काम करे भी के सगे सगे देखो कि यहां देख ले भाई चार बजगी तो वा अथन गई जी राशन है बी की व्यवस्था देखा भाई मैं थोड़ा छाना चुग ले आऊं है एक रोटी और लकड़ी है जी तोड़ ले आऊं तो अथन के काम आसी है बर्तन मांडो माजेगी फिर जे कोई बकरी घरारा कह दबा बी कह के लालच बहुत हो है कह भाई मैं थोड़ी सी चावड़ी पाड़ ले आऊं 5-6 किलो जानती जो बकरी खातर ले जाऊं है तो आप कटे कटे मुकाबलो करांगा करी कौन सका
1: कौन नहीं कर सका। और एक मन अब भी देखो के जठे भी कोई भी आपा खेती बाड़ी करिया आपने कोई भी देखो तो भी कमाने यहाँ मान लियो के आदमी 2 दिन अगर खेत में नहीं भी जा तो चल जा, लेकिन घर की बीरवान या 2 दिन खेत ने छोड़ देगी तो भाई यहाँ देखे के खेत के यहाँ कौन गया भी कह भाभी चिंतिया आ को नहीं कहा आपा तो 2 दिन ब्याह शादी में जाया मस्ती माली बा बंद तो दे के भी आज थे कौन गया तो डांगर पशु है पशुधन है अवारा पशु है क्योंकि खेत में बढ़ जावा को अपने घर पशुधन पर भी खातर को ले आएगा वह भी चिंता देखो बांक साग कट्ठे तो अहिया हो जावा कह जिया मालियो कह खेत बाधियो और कह महिलाएं कह रहे तू ही संभाल बा आदमी तो कह मत दारू कमान अठे भी देखो बहुत तकड़ी बीपी की भूमिका बने
0: भाई अर्जुन भाई परिवार में रिश्तेदारी का मां देखो कह छोटा मोटा काम तो पड़ता ही है बयान शादी बात छुचकन गमीन सब तरह का देखो कह अवसर आवे अब्बा में बे लुआई पता ही 2-4 दिन ही जाई
1: जावे था
0: पर 2-4 दिन जाई ने बीते में घर जुगो ने भी हालत
1: खराब हो जाए हैं हो जाए था
0: से तो गाबा इन जगह काला करड़ा खुंडा पर लाद दी एक एक गाडो हैं एर कमरा मा देखो के बुहारी झाड़ी काटे कुण कुण पोचा लगावे
1: कोई लगा
0: हैं अब थे जानो के लुगाया का काम इस जगह दिन भर चलता रहे है और वह देखो क्या बात करती करती हंसती हंसती पटा पट पटा पटा आपकी कर बो करे
1: कर दे
0: है अरे भाई 2-4 दिन गांव जाने इतने बेरो सो पड़ जा
1: बेरो पड़ जा
0: हाँ के काम किया हुआ है अरे आदमी बेरो भी है कभी काम तो दोरो है पर भाई आप मुंडा गुन गए अब भाई 2-4 दिन जब गांव जाने जब बान बेरो पड़ जाए लेकिन आवे ने जब पाछी बाई कहानी तो एक खातर कोई भी जो क्षेत्र है बिग वहां देखो के महिलाओं को जो योगदान है वो वास्तव में देखो के बहुत जोर को है चाहे पढ़ाई लिखाई को है चाहे खेल कूद को है
1: चाहे
0: खेती बाड़ी को है घर की देखो के साज सज्जा को है घर जो को है भी अर्जुन भाई जार प्रकार का काम हुए काम भाई दिखे को नहीं लेकिन काम बहुत हो एक मिनट को जो ओसान है वो घरंग लुआन मिले को नहीं
1: मिला
0: अब लाल दिना मापा देखा कि एक महीने आंधी उड़ा कदे काली कदे पीली कदे उत्तराधीर दिखना दीर रोगुणी आती कितो रेतलो आयो है अब वो रेतले जो मकाना में घर में किया कर रफो ही रफो हो गयो है अब तो पूरे घर ने पे झाड़ जुड़ गए 2 दिन में ठीक करती थी वो रेतलो जो आज है तो देखो कि नाग में दम कर रखियो
1: दम करे
0: पर फिर भी देखो कि भाई हिम्मत को नहीं आ रही
1: हिम्मत
0: को नहीं आ रही भाई देखो काम का
1: लग ही रहे
0: हैं
1: और आदमी तो देखो कि भी टाइम अगर 2 दिन अंधी आगे एक दिन साफ करती बोले मेरे तो को नहीं आंधी आन दे रोज रोज और टंटो को भट्ठे भी देखो कठोर रहे मजबूत रहे कि काम तो करना ही पड़ती तो भी के हिसाब से ही काम करे क्योंकि हर जगह महिला या मान लो महिला शक्ति बढ़ रही है कोई भी थे बात करिए बाहर खेल कूद का मैंने या पढ़ाई में लिखाई का मैंने आज सबसे ऊपर नाम आवा
0: है
1: फलानी नौकरी का मैंने इतनी महिला लगी तो वो भी देखो बंग स्थान बहुत ऊंचो है
0: सही बात भाई हरेक क्षेत्र में आगे आ रही पर खेती बाड़ी का जगह काम ने अम भी देखो के हमेशा हूँ, आज कोई नई बात।

0: खेती बाड़ी को काम चालू होजद लगा के देख लियो, इतिहास लगा के देख लियो, किताबान पढ़ के देख लियो के महिला जी की है बा घर का काम पूरा निपटा के खेत में जाके जो आदमी काम कर रहे है सागर लाग के और बीघा जी तो काम करके पाछो घर आके देखो का सारा जगह काम है बन बा निपटावे। तो ई खातर खेती बाड़ी को जगह काम है बा में भी अपनी जगह ग्रामीण महिलाएं हैं बांगो जो योगदान है भी को देखो के कोई मुकाबलो को नहीं। और अब देखो के एक लोक रचना जगी है बा अपा किसान भाई ने सुना दिया पप्पू मस्ताना की आवाज में
1: सुनाओ सा।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: हाँ तो किसान भाई, अंतराल से पहले आप पप्पू मस्ताना और साथियों की आवाज रे माई लोक रचना सुनी। वीरा मारा रामदेव रे भाई ने एक कर लेवन है। महिलाएं की बात चल रही, महिलाएं की लोक रचना जी है वह किसाना ने सुना दी। पड़े टेम है जो देखो के चाल रही खेती बाड़ी
2: को।
1: और खेती बाड़ी में बात करा जब आप बुआई की, तो देखो के मकान जद बनावे ने तो भी सो मजबूत नींव की
2: हाँ।
1: जितनी मजबूत हो सी ने बीतो ही देखो के वो मकान है वो लंबे टेम तक चले है। भाई बात खेती में के आप पहली जगह सूट का काम है, पाट पुट करानी है, खाद खुद गेरनी है, खाटा खोदना है, बुरना है, जो भी काम है पहली कर लिया। फिर जब जोर की बिरखा हो जाए तो फिर चुको मुख्य काम है वो है बीज को। कह बीज को जितो बढ़िया और उन्नत किस्म को है गो, आगे को जो खेल है ने वो बीतो ही बढ़िया रहे है। अभी का दो काम है के एक तो जिया बीज जो आपने खेत का आप तैयार करा। कई किसान इस का बीज उत्पादन तकनीक कम है भी ने के बीघे दो बीघे मां थोड़ी थोड़ी दूर के मां जो नाज है वो नाके बा के और अगली साल खातर के बीज रखे
2: तैयार कर ले भी ने।
1: और कई किसानिया करें पहली करता के जिया चोखा चोखा छिटाई तो वे देखो के जोड़ी गमा नाके बेड़ा कर लिया
2: करता
1: है। मूंग मोटे मांगी फली तोड़ तोड़ के नाके कर लिया करता, गुआर की फली बह रख लिया करता। और जब बाने की टेम आती भी टेम देखो के भी बीज ने काट के और खेत में बा देता। तो भी में कट्ठे ही किए गए कोई ऊंच नीच से होने की गुंजाइश रहती कोने। धीरे धीरे जिया अनाज को उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान देखो के रसायनों को इस्तेमाल करियो। और रसायन का इस्तेमाल क्यों हो का आपने खेत की माटी जगह है वह नशीली होगी। रोगल होगी, भी किसकी क्षमता है वह कमजोर होगी। और कमजोर होने से क्यों हो बांध का रोग चल गया है। अब थे देखो

0: के जो आदमी टब कोई कोत्यू है ने भी के ना के बा हमेशा ही बहती रहे वो सरड़ सरड़ करीब हो गए
1: करीब
0: क्यों के भी के शरीर के माज की श्वेत रुधिर कणिका ही बाकी संख्या कम है
1: कम है
0: जिकी बे जिका रोगाणु हो बार बे खजिया खत्म कर दी कलेव कर जिया वे बा
1: कलेव कर जिया
0: है तो आप कहने के भी के प्लेटलेट कम होगी
1: कम होगी
0: है के बे जगह के शरीर में कम हो तो बिन खतरो ज्यादा रहे
1: ज्यादा रहे
0: और जगह के शरीर में ज्यादा हो तो वे देखो के एकदम टड्डू रहे लेने कोविड आयो तो कोविड में भी आप आई हालत देखी
1: देखी
0: सर हैं घना ही मोटा मोटा टड्डू जगाई बा देखने मियां लागे जाने का दो दो कुंडल का जगा एकदम टड्डू आने कया का बाजा बाजिया हैं जांच कराओ बोले हो तो कह क्यों गोनी हो तो पिंजरो है गए पांच चार दिन काट यार पट पांच चार दिन काट यार पट है तो कहने का मतलब वो है के आपा बीज ने उपचारित करके बावा ताकि आगे चाल के अपनी फसल में कोई प्रकार को रोग जुको है अड़ जुको है वो नहीं लागे अपनी फसल है जी टेम के ऊपर बद है बिगे फल फूल आवे और चोखी अपने फसल हो क्योंकि आपा भी आई चावा प्रत्येक किसान है वो आई चावे कि जिकी फसल आपा खेत माए बोवा वह मुकड़ी हुए और नाज होने में देखो के अर्जुन भाई सगड़ा को सीर हुए है तो ई खातिर किसाना ने कहना चाहवागा कि बीज जुको बाओ वो उपचारित करके भाइयो और उपचारित करो जे घरा तो देखो के छिया गमा करियो हाथ में दस्ताना पैर के मुंडे के देखो के साप लियो लपेट के और छिया गमा तिरपाल के ऊपर बीज घेर के रसायन घेर के बीघा लगा कर छया में सुखाणो है कदे या नहीं के तावड़ियो पड़े तो लगा के तावड़ियो तिरपाल ने कर दिया और पंगलिया चला गया दस मिनट में सुखा सुकू के अरे एकदम बना गया भोगड़ो सो खेत में टेका भोग
1: गड़बड़ कर दे और एक माने अभी देखो के कई किसान ये भी देखे कि जैविक तरीके से भी उपचारी करा तो वो भी बहुत बढ़िया तरीको है भी कमाने भी आप इस हिसाब से करा जी आप रसायन को करा भी हिसाब से हड़बड़ी नहीं करनी कोई चीज की कई बार आप यहाँ कर लिया के भी चलो आप बीज उपचारिक ले रहा है तो आप सगड़ो काम कर लियो बिगा डोलिया डब्बिया बैठे रख दिया आया नहीं हर चीज की बात बताई बहुत बढ़िया बात है कि दस्ताना रखनो आपने दस्ताना रखे मुंडे का मास्क लगा लियो तोलियो बांधो चश्मो लगाओ ए जितनी भी अपना सावधानी रखेगा ना भी तो आपनो बचत है क्योंकि आपा जब भी कई बार कहना सावधानी घटी दुर्घटना
0: घटी
1: तो एक मायने आपनो ओ ये के जठे भी आपा बीज उपचारी करिया बीज बढ़िया बीज लिया हाँ जठे आपनी जमीन है भी जमीन को लेवल देख लिया के भी अटे पानी तो कोनी बेड़ो हो रही हो गए वो भी को भी अपन ध्यान रखना बहुत जरूरी है अब देखा के आपने खेत का मायन से बरसात को पानी दूसरे खेत में जा रही है तो बिने भी रोकना बहुत जरूरी है जिकी छोटी छोटी बात का नहीं अगर आप ध्यान देखी अगर आप खेती बाड़ी करेगा तो इको अपन मोकड़ो फायदो मिल जाओगो
0: तो फायदो देखो मिल तो रहेगा अपने एक भजनी और सुन लिया जी
1: है हाँ
0: हाँ तो भवनलाल सोलंकी की आवाज रमाई एक भजन है जगो और सुना
1: सुनाओ सा

0: हाँ तो किसान भाया अभी आप भंवर लाल सोलंकी और साथियों की आवाज रमाएं या लोक रचना सुन रहा और उम्मीद करा थासियों के जिकी बाता चाहे खेती और गृहस्थी हुए चाहे किसान वाणी हुए पिगमा जी की बतावा वहां पर गौर कराया करो क्योंकि नित बड़ी है अच्छाई की काम की बात आदमी ने कट्टे भी मिले तो बात जीवन का माँ ग्रहण जिके बात जरूर करनी चाहिए जाए। तो खेती और गृहस्थी को टेम है जो अब 28 तक है ओजू मिलने तक गोपाल भाई ने
1: और भाई अर्जुन ने
0: देव सीख करा
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। ये आकाशवाणी के चूरू केंद्र का प्रसारण है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की। गीत लिखा है समीर ने, संगीतकार नदीम श्रवण।

राम जाने। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने उदित नारायण, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में सुना। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतकार थे अनु मलिक। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आइए अब आपको एक बार फिर सुनवाते हैं उदित नारायण की आवाज़ में रंगीना फिल्म का गीत। गीत लिखा है महबूब ने, संगीतकार ए आर रहमान।

0: श्रोता अभी सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को। गीत लिखा था सुधाकर शर्मा ने, संगीतकार हिमेश रेशमिया। फिल्म का नाम हेलो ब्रदर। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से

0: और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चोरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चोरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: अंतरालों के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हीरो नंबर वन फिल्म का गीत आवाज साधना सरगम की। गीत लिखा है समीर ने, संगीतकार आनंद मिलंद।

श्रोता अभी सुन रहे थे जान फिल्म में अलका याग्निक और उदित नारायण को। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में तेजाब फिल्म का गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: श्रोता अभी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रही हैं FM 100.7।
1: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से

0: कब्राई। कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने

0: मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया।

0: और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

सुप्रिया और साथियों को श्रोताओं अभी आपने सुना। इस लोक रचना के साथ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम चर्चा का विषय है।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोइन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल

0: डिजिटलाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
2: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना है, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
0: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन्स हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी, जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
0: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, CSC की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
0: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब AI इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें AI से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए, ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था US ओरिएंटेड, जिसको हम GAFAM बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं, दूसरा। और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है, वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन।
1: जी।
0: हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इस पे एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने AI का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी AI को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
0: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से GPU प्रोवाइड कर रहा है जो सबसे सस्ता है
1: जी।
0: पूरे विश्व में वो MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो AI कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो LLMs या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहाँ ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
3: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस AI फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी API कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स का, मैं अगर ई-कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास UPI है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही AI का अभी कुसुम जी ने बात किया कि AI कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में GPUs दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि MyGov जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
3: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है MyGov आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो ये दीज आर ऑनली

0: चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: प्रसून जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है, इवन जो आपको सर्टिफिकेशंस, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें अब आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे, तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है, तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
0: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब भी हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में, और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है, तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब भी हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं कि बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर से, और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे, जो कुछ भी करप्शन ये सब है, वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है, और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है, ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है, TG Semi में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो IT, AI, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
2: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, AI, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल

0: इंटेलिजेंस और सोवरनिटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमिकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवरनिटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
1: कर रहे हैं हम
0: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी MOU साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है, उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए है, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, AI में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन AI का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है चाहे डिफेंस हो चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन AI का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये AI के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब AI के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है ये बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है पॉलिसीज, आप जो भी पॉलिसीज चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी AI के लिए भी हम लोग को GPU चाहिए। अभी GPU अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का GPU चाहिए, हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो AI तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो GPU पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंड ना रहे।

0: जी, अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है। किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पर जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
1: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
0: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल हो या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज है उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन कर रहे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
0: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था, इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
1: जी, टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
0: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव है, हम लोगों को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कि हमारे जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल. सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे. और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग ये करते. तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है. और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है. और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से. नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो की एक मॉडल होके निकलेगा. इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता.
0: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही. हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर. हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद.
1: धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार.
4: चर्चा का विषय है.
5: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है. ये कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले किया गया. हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं, इस समय रात्रि के ठीक 10 बज चुके हैं. आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन.

श्रोता भी सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित हरिप्रसाद चौरासिया का बांसुरी वादन, राग था बैरागी। श्रोताओं, अब ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुने सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंकज उदास की गाई कुछ गैर फिल्मी गजलें।

इस अंतराल के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम सुगम संगीत में फिर से स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं पंकज उदास की गाई कुछ गैर फिल्मी गजलें।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन

सरण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।